लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, तक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे ता

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर न रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जा

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन मिलता।

बल बल जे विसन तना जस गावे, विसन मिले सब ही सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो आ

निवारे, कल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओकंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होए। ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग,

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजय विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कभो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाए, कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलांबा।

से सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया।

हर त्यावें तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवन अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे श्री सब गोई जन नानक गुण

कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहे न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया।

गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किस

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, हित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम।

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख देहे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदासे परमल रूप उजल मोती चू गए हंस सर्व कला जगदीश।

नाद बिंद की सुरत समाये, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवांतो, राजन राज सदा भिक्षांतो। जिस तू राखे कृपा तार, बूढ़त पाहन तारे तार। त्रिभुवन में जोत त्रिभुवन में जानिया, उलट पई कर कर।

ते से जन बाचे जो प्रभ राखे सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे सतगुरु सेव अमृत शब्द पाखे साचे शब्द मुक्त गत पाए नानक विच्चों आप गवाए। आसा महला पहला जो तिन किया सो सच तिया।

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला कौ किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ मज्जन हर रस रेद, गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे, आसा मेला पहला, निर निर पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ रमनी रवे बंधन नहीं टूटे विच हो मैं परम न जाई सतगुर मिले तहु मैं टूटे ताको लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर्धारे भगत वचन जग जीवन दाता मत गुरमत हर निसारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मने समाए नानक कृपा करे।

ऐसा गुरमत रमत सरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग भगत हर रंगा, अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार, अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक कर।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चो।

चीने तत गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ पागे, पहरुवरा सब चोर न लागे।

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशी ता तीर्थ वासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहां करे मोसियों आगे रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

है कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे कोरत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवस है नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक हटे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे ओथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश बहे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े।

सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

माफ़िमा हंडावो जो किच करे पला कर मानो सहज जोग निद पावो। बाबा जुगता जियो।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है नादन। पक विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला गुरु कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है

रच रहा एन सुबनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जाको नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पौ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिर्फ तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर सर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सदना का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै।

हर दर्शन पावे वडभाग, गुर के सबद सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुकुट गत होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नकीर। जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा।

पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकठो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति जोत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हों में मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोई संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करनी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करनी कीरत नाम वसाई, आपे देवे टिल न पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार।

में दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागन जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंदिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साची।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साथ समाए। हर सब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे थिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मन मुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा दो कूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पाणा मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा, पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे न आवे जाए। पूरे गुर ते साज समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए। पूरे सतगुर दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत करे बहु वाजे बजाए। क्यों मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यों चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवा काफी मैला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के पाणे सतगुर मिले, सत सोजी होई। गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई। मैं सहुदाता एक है और नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई। रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है, पाइये गुर विचार। बिन नामे जम के बस है, मन मुख अंध द्वार। हर के पाणे जन सेवा करे, बूझे सच सोई। हर के पाणे सालाहिये, पाणे मने सुख होई। हर के पाणे जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई। नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई। आसा महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तू करता सच्यार में दासाई,

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहा, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पा

जाए वडे पास गुरु मुखार पाए नाम ही कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पास कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण परमा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत तत कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मेला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। काया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे।

आए आते हर अपरम पर करता हर आते बोल बुलाए से संत तले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गायक वंज ले जाए।

गुरपुरे सावास चलन जानिया लाहा नाम से सार सब सुनाणिया रहा। पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के कल तुरु।

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मैला चौथा जन पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच।

हम दिन नाम से आए हर गुण गाये, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाये, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है, नानक आपे आप खुआई है, गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है।

हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिद तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हो हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर दिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सति कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुनाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम सतगुरु राखे दे कर हाथ, ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा, असमय ला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रै सो राति तन सुहागन।

चार जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परसाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सत परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख रिहाए।

तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल कौन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुन उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा। परदेश चार सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन यो मन लपतानी। सावा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साय कठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विश्व सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चलचीत। पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हट के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बख्शिंद, ते सौदा गुरमुख किने।

माना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जाने एहो लोक अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोयो कंक मिलियो मेरो सब दुख जोयो आंगन मेरे शोभा चंद निस बासुर प्रसंग आनंद बस्तर हमारे।

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन न पतियारा,

0: बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे,
1: सत्य में तेरी नीकी जात, द्वितीया तेरी मनिय पात, तृतीया तेरा सुंदर थान।

तुझ पे दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दिस है तिस सर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती।

बिचता अस्त्र रटक परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

खुद जन बकरा मोको कहाँ डराई रहाओ हर मेरी ओट में हर कातान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मेला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुरु सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर पट्टी आया मिल सतगुरु तन पूरा पाया ऐसा हर तन संची है भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जाई रहाओ कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सच्चा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसान।

कर में वक्त बाहर उठ जाता सुनी न जाई सच उमड़ता था वार करते चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेब बिरानी कैसे गुने अच्छा दो प्राणी तिस्यो लूक जो सद ही संगी काम न आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला जो पावे त्यों कर कृतपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत पंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल सो लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा मेला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप संवारिया।

साध संगत निर्बुद विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्यवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तांते बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध

गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पात कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा महला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोरी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाक हे बिस्माद, नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कस छोड़ न जाए, नानक गीदा हर रस माहे, आसा मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके गुरमत अपनी

आज्ञा मान प्रगट हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कित न काम, मिल सौत संगत फज केवल नाम, संग जाम लाग पौजल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रा

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिस मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक एक है एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने उपदेश करे आप न कमावे सत शब्द न पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रेह प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना।

ऐला जन्म दो आया, पहुँच न साके काजू बाते आगे ठोर न पाया। रहाओ किस पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, ता बिगुता जे कोई न राखे, ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला, दोए ठौर अपने कोए, इहां काम क्रोध मोह व्यापिया आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, गर्मी मारी साथ न मरी, नाम ना सुने डोरा। रहाओ माया की किरत छोड़ दवाई, भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा, हत जोग ना पच।

तहां छुपाया कूड़ कपट वंश निमुनिया दाला बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्या उदम करत हो गए मन निर्मल।

आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्णो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरध समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यों प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काड लिए माँ पौजलते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइये सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइये भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इत उतराखन हाय।

देखत मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये।

कोरते बां पकर गुर काट लिए, निरपो पे सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ताहो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाये, यो स्थान गुरु ते पाये, राव दूजा आसा मेला पन्नवा। कर में सुख बार फुल सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे, सो नाम जपे जो जन तुद पावे, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुकम बूझे सोई परवान, साथ सब ज्ञाता निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा मैला पन्नवा। जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगा।

चल तोहरे हर गाय श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग सगले मन लखा राव, कारज काम बाट काट जपी जय, गुर प्रसाद हर अमृत पी जय, दिन सरैन हर कीर्तन गाय, सो जन जन की वाट न पाई है, आठ पैर जिस विसरे नाही, गत होवे नानक तिस लग पाए।

आओ, सतगुरु का सत शब्द कमाओ, फिर घर बैठे प्रभु अपना पाओ। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुरु दीना, इन सुख नानक अंदिन चीना। आसा महला तन्यवा, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत उह चौकुन तुमाने। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे। आसा मेला पन्यवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

के सूत्र होई कट कट अंतर रया सोई ओ पट पर लो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया त्रिशन बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सियो मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पावना लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एव सफल भया, कहु नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा। सतगुर अपना सद सदा समारे, गुर के चरण के संग चारे। जागरे मन जागन हारे, बिन हर अवर नाव सुकामा। चूठा मो मिथ्या पसारे रहाओ। गुर की बाणी से रंग लाए, गुर कृपाल होए दुख जाए। गुर बिन दूजा नाही ठाओ, गुर दाता गुर देवे नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप। आसा मेला पंजवा। आपे पेड़ विस्थारी साख, अपनी खेती आपे राख। जत कत पे खुए कै ओही, कट कट अंतर आपे सोई राव। आपे सूर किरण विस्थार, सोई गुपत सोई आकार। सर गुण निर्गुण था पैनाओ, दो मिल एक है कीनो ठाओ। कहो नानक गुरु परम को खोया, अनद रूप सब नैन।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभु तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

के तुत कटे न डोले कहू नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला संजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंध कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आए इहां सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

मेरी गत तक तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन

सारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोए लादी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आसा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद पली बनी जाके गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपैतनी राव नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिट

तो जन पूरन रहे अधाई कछु न थोरा हर पगतन को खात खर्चत बिलछत देवन को रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

जहाँ को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मेला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

कर पाया। साध संग जप्यो हर राए, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मैला पंजवा दो पुके नावा, उनके संग तू करती केल। उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे।

सहारे उनके संग तू रखी पलोल उस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत उनके संग तुम साख जगत उनके संग तेरी सब बिथाटी उस बिना तू हुई है माटी ओ बैरागी मरे न जाए हुक्मे बादाकार कमाए जोड़ बिछोड़े नानक खाप अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा ना ओ मरता।

ता हमको तृष्णा जा ओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तो पावो।

संत ओट कब तेरा तान सासा मैला पंजवा उपत हुए कह राज समाया कर कर अनर्थ विहाजी माया संचत संचत फैली कीनी प्रभ उसते डार अवर को दीनी काच गगरिया अंब मजरिया।

पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मैला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है। जिस मन उठा आप किस ना विसारी है। जो किस करे सो आप आपन पाणिया। भगता का सहाय जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे न चूरी है। नानक दर्श किया।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंद।

जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बहुर बहुर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आके।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

परम राजा बिस्माद हुआ, सब कई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिए, कल युग ऊतमो जुगा माहे, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे, अपने संतां दे हर दर्श।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़ते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुम्ब बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाही, नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना, एक है सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना, आशा मेला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई, ओ अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक इहो हर का चोला, आशा मेला पंजवा। अपनी भगत निवाहे, ठाकुर आयो आहे, रहाओ नाम पदार्थ।

कमाया गुण रस रस गावे एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आशा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये सगले दुख जाही जीवन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा मेला पंजवा हर बिसरत सो

माए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध शरण प्रभ संग वसै आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे

पूरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया जिन कारज रहे ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर।

गोविंद गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहा सो चित धर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जा गया हां, नानक बड़ पा गया मेरे मना रहाओ।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल संतावे, सतगुरु शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाए।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाल गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मैं गो मोल पार अपार अटल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी खाए नानक सूतक जल

कर शिव सहज कर गुर करतार आशा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए गुर ते वाट महल कर पाए।

पांच अकूट पंच तीन नव चार सुमावे, तरण गगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिखका माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण तोवे।

हुक्मो वर्तै जो तिस पावै गुरबिन पूरा कोई न पावै बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बड़ पागे।

रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा, लब लोभ अहंकार सुपीरा, राम नाम दिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाने, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द बिन मेल ना पछाने। निरंकार में आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे। सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहाँ नाम मिले तह जाओ। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नाम मेरा ताहर गुण गाओ। गुर सेवा से आप पछाता।

सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होई निवास, किलविख दुख काटे हर नाम प्रगास, कर विचार आचार पराता, सतगुरु बचनी एको जाता, नानक राम नाम मन राता, आसा मेला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उपजाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह कर आपे, बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा। राव यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुरु मिले, काल कंटक मारे सच पीले। यो मन कर्मा यो मन तर्मा, यो मन पंच तत् ते जन्मा, साकत लोभी यो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई। यो मन जोगी पोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभ आपे, मन बैरागी हो मैं त्यागी, कट कट मन सा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखे, दर कर मैली हर पत राखे। यो मन राजा सूर संग्राम, यो मन निरपो गुरमुख नाम, मारे पंच अपने वस किए, हों मैं ग्रास इकत खाए किए, गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख यो मन भगती जागे, अनहद सुन मानिया शब्द विचारी, आत्म चीन पय निरंकारी। यो मन निर्मल दर कर सोई, गुरमुख भगत पाओ तुम होई, एनस हर जस गुर प्रसाद, कट कट सो प्रभ।

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नही है, राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो, आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ, कनक कामनी हेत गवारा, दुबदा लागे नाम विसारा, जिसको बख्शे नाम जपाए, दूत न लाग सके।

अवरना औषद संत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्दे जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाकी भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग।

राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर शेर देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कल

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवीताए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टिया मांगी पाए संदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर महला अंदर होंदिया हुण बहन ना मिलन हदूर।

तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे।

आई कहां सो तेग बंद गाडे रड़ कहां सो लाल कवाई कहां सो आरसिया मो बंके एथे दिसे नाही एहो जग तेरा तू गोसाई एक कड़ी में थाप उठापे जर वंड देवे पाई राव कहां सो कर दर मंडक महला कहां सो बंक सराई कहां सो सेज सुखाली कामण जिस वेत नींद ना पाई कहां सो पान तंगोली हरमा।

रामे तेग वगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुरानी, इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रो।

ना होई जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले तां संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो पावा।

अंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर पगत सो जागे गुरते दर कर जानिए।

दर्शन दीजै, गुरमुख नाम से आइए मन मंदिर पीजै रहाओ, कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे, गुर के शब्द समाइए परमार्थ जाने, यो मन राजा लोभिया लुग तो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बनियाई, कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे, मन मुख सच ना पीजे कूड़ कूड़ गडावे, लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी, दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई, एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई, मन मुख पत्थर सैल

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है, गुर की कार कमाए महल पछाणी है, रहा आप मिलावे सच ता मन पावे।

अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साके पर खाई, गुर बिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई।

जिस पाप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए। आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई पद निर्वाणी मैं ओ लगिया ओ

नित नित खरा संभालिए, सच सौदा पाइए, खोटे नजर न आवनी ले अग्न जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाई।

कांडिया नानक नजर करे हो मिले सच वांडिया आसा मेला पहला आवन जाना क्यों रहे क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घनो नित सहसा दोई बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतुराई सतगुर साध न सेविया हर भगत न

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साक्षात तीन मूल मत।

आस तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब चेहरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नावे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुरु ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरुमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरुमुख भगत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरुमुख हो मैं मारिए मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना।

आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर।

सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सत

सारा अंदर महल अनेक हैं, जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त कमाल लई गुरसो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई, बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत जो आई, कारदार छोड़े अपना पर कर चू

पर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता मेला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरुमती साला है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई, गुरुमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किस नाम है।

आ बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ त्यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सुहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर रतन।

सब फिर बिन शब्द हो न जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पै पाए जो रते सिफ्ती सच समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा पिर पाया हों मैं आप दुआए, पिर सेती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए, नानक जे सुख लोड़।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन।

विच्चों आप गया नाव मनिया सच मिलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सफल तिना का जन्म है तिन माने सब कोए रहाओ हों मैं मेरा जात है अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर पेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवै निज पाया परे अकुट भंडारा।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आप खुआयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख वही शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है निचल हर को नाओ, कर मित्राई साध चो निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

दर्शन कौ बल जाऊं, जिस सिमरत दुख बीस रह प्यारे सो क्यों तजना जाए। यो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता।

पढ़िया पंडित आप थिया छछे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज्जे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी तीख पवया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं।

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ हो आसो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

ममे मत हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कके काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ ना जाई हर कथिया, नानक जिन को

स्वामी आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे, कर दया मया दया साचे शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसे, तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणे वस अवगण नसे, तुद बाज इक तिल रह न साका कहण सुनन ना तीजे, नानका प्रयोग।

जब तप कर कर संयम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कनेरे राम कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम, अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम। अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे प्यारो, आवन जावन ठाक रहा है गुरुमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेर ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

गुरमत हर त्याव नित हर गुण आख वखाने एनस नाम तिसे का लीजे हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम छुपाया।

पहला हम घरे साचा सोहेला साचे सब सुहाया राम तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफल्यो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली, हर वर न पाए राम। कामन गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भक्ति जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भक्ति चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा।

गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्ब अटिया गर्ब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गर्ब लागा जाए मुगद मन।

तिन हथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

सारा जगत ने सारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर पर चय गुर

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मनमुख मूड़।

अभिमानी हर रामो नाम चुराया। मां बिखम जम पंख दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरुमुख।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होवा जित राम नाम पर गासे।

हर कर्ता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो। हर सेवा पाई परम गत पाई हर उत्तम हर हर काम जियो। हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस्थिर होवे। जन्म मरण दोवे दुख मेटे सहजे ही सुख सोवे। हर हर कृपा तारो ठाकुर हर जपिए आत्म राम जियो। हर हर करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर हर नाम जपिए।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लग

गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई हर हर लिव लाई।

क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टिकाए जियो। महायुद्ध जोध बहु कीने।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद देवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बा

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया।

बाबा समेला पंजवा छंत कर पहला अण दो अण दिघना मैं सो प्रभु दी था राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसीठा कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभु नैनी दीठा।

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंग मानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुरसूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ पणिए तह साध संग न डरपिय। कर कीरत गोविंद गुणिए सगल प्राचित दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न कीजे इक राशि के हम पौनिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावनिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी तिह शिव यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जा को सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जा को अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जा को जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बारा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी ऐसा मेला तन्यवा श्लोक उद्यम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराद हर हर त्याय सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पे चरण जम पे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर

सूर्या अगाद बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तें तें प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह जिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

चैन से। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया। कतहुना तावो शरण पावो, करुणा में प्रभ करमया। समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी, बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद अनंद माया, अज्ञानता लपतावे।

छिसै जोबन बलै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेसे पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख नहारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीफ उधारे पगत संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत पछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम ते आए पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा पट पट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक राव रहा।

नाथे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया, हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे। आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत। पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे, राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो, चरण कमल ध्यान हृदय प्रभु सरना ही इखनो। तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे, बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया, बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया। मिल सकी आप पूछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने, गुण गुण गुप्त अतार करते निगम अंत न पावे, भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे, सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने, बिन हंस नानक रंग रा

सहज सर से हर नाम रह से प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करें पाप अमित्या।

साथ है, संग देखे करणहारा काए पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए, आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते, वल वंश कर उदर पर मूर्ख गावारा, सब किश दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पदन संगे कुल समूह आतारी है, शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करण हारा, खोट न की चई प्रभ पर खुनहारा, कूड़ कपट कमाऊ गड़े।

आया जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा बिन वंश नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर संदौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक दिन कछ

हार सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत, कमला परम पीत, हे तीक्ष्ण मद विपरीत, हे अवध अकारथ जात, गैबर बन कोर, गैबर बन कोर, हे गृह मूसक मन चोर, हे दिन करो अनदिन खास, दिन खास जात बिहात, प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते, जन्म मरण अनेक बीते, प्रिय संग बिन कछ नह गते, कुल रूप तूप ज्ञान ही नी, कुछ बिना मोहे कौन मात, पर जोड़ नानक शरण आयो, प्रिय नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन, मीना जलहीन, हे ओहो बिछरत मन तन खीन, हे कत जीवन प्रिय बिन होत, सन्मुख सहबान, सन्मुख सहबान, हे मृग अर्पे मन तन प्राण, हे ओह बेदियो सहज स्रोत, प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी, खिन रहन त्रिग तन तिस बिना, पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे, चितवंत अंजन प्रमना, श्री रंग राते नाम माते, पै परम दुतिया सगल खोत, कर मया दया दयाल पूरन, हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात, अलियल गुंजात, हे मकरंद रस बासन मात, हे प्रीत कमल बंधावत आप, चात्रिक चित प्यास, चात्रिक चित प्यास, हे तन बूंद बचित्र मन आस, हे अल पीवत बिन सत ताप, ताता विनाशन दुख नाशन, मिल प्रेम मन सन अतकना, सुंदर चतुर सुजान स्वामी, कवन रसना गुणपना, गह पूजा लेवो नाम देवो, दृष्ट तारत मिटत पाप, नानक जम पै पटित पावन, हर दर्श पे सत नह संताप। चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ, हे रख लेवो शरण अनाथ, हे मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान, हे मन लुबद गोपाल ज्ञान, हे जाचक जन राखत मान, प्रभ मान पूरन दुख विदीरन, सगल इच पूजंतिया, हर कंठ लागे दिन सुभागे, मिल नहा शेष सुअंतिया, प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी, सगल कलमल पहान, बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कच नि कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतन्याओ वड्डी वड्याई जाने चलसाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दास वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवा

स्वाद रूप स्वाद रंग स्वाद नांगे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद स्वाद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद कुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार।

सतिया मन संतोष उपजय देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना सो करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार इक होदा खाए चले ऐठाओ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार कोई जी आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार नाम पगता पुपसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार मेला फैला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार हर पांडे ताकिया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ तो है अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच होवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मूर्ख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझे तांगर सूझे ज्ञान विहूणा कर कतलूझे नानक हुक्मी लिखिए लेत जिहा वेखे तिहा वेख मैला दूजा हौ मैं एहा जात है हौ मैं

इस माए कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया ओनी मंदे पैर न रखियो पर शुक्र करम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बस्ती सी अगला नित देवे चने सवाया वड्याई वड्डा पाया।

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परिये साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते सास, नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, बिन नावे किछ खाए न पाई, रह बिमानी मरी मसानी, अंग न जाने फिर पछतानी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे से ते ने केवल, हों मैं सब जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाम दे, दर सोहन कीर्त गाम दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताऊ दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सब तो पर जानिए जार दस चाहोए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सब तो पर जानिए जा फल करे प्यार नाओ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सब तो पर जानिए जा जुगत जाने जियो तर्क पाया साध के विच दे करता बियो। सब तो पर जानिए जा सिख सकीले दया जाने जी की किस कुन दान करे।

सूत होए, नानक पाहे बाहरा कूरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए, नानक पवती जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूर हो आशिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार परमी तरम करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो वे कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला गदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेखी जगत उपाया इकना नो तू मेल लह इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवाता आत्मा। आत्मा वास देव जे को जाने भयो। नानकता का दास।

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अतः उमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गै रथवाहो, त्रेते रथ जते का जोर अग्गै रथवाओ, द्वापर रथ पपे का सत अग्गै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत धीरज अत मुच ओज आवे आस कर जाहे निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए तारका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादंग सिलकूज बगल समादंग मुक्त ऊट बेपूखन सारंग त्रैपाल से हाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे वे सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां जिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे कर

तब कपाहो कतिए बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुतिए पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला नाई मने पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न टूट सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुप वैन दारी तग न तैरी तग न

सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी। हुकम मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी, खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी, ता दरगे पैदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गो ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर कर न जाई, तोती टिक्का तै जपमाली तान मलेच्छा खाई। अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जाहे करंगा महला पहला। मानस खाने करे निवाज, चुरी वगाने तिन गलता।

दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का तेड़ पोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्तर पहर होवे प्रवान मलेख तान ले पूजन पुराण अपरख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत भिटे वे मत भिटे यो अन असादा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देवडे आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सुरे सुर तंदे लाएंगा नदर उपठी जे करे।

के पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों चूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के पले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज़ा।

नानका जो तेल पौड़ी आपते ही करना कियो कल आपते ही चैतारी है। देखें पीता अपना तर्क ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई।

गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान, नानक जिसनो लगा किस मिला है, लगा सो परवान महला दूजा, जो जी होए सो गुवे मौका कहे आवाओ, बीजे बिख मंग

परमा साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार, नानक

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग ओए हर के संत ना आखिया।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तै कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, तिन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिये, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिये, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताके हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी।

रे बौरे तुम करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी माँ पिता थो काको, कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। ब्योरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए। कह कबीर सुनो रे संतो, कैसा गर कह पाई, इस बंदे से

एक तो के संत सुनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोव

आकार होगनहार हो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक अपना

पायर शोक पुजंग बलयो रहाओ, सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत तें ले गयो, मेरी रासत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर कन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए।

आई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। सू में तन राशन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे आज्ञा मन सुख पाई जो तिस पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बाकत ही पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ बिचारे। कलमा अकल है जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे, तब तो दीन पछाने। खसम पछान तरस कर जी में मार मनी कर फीकी, आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरी की। माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना। आशा गगन नगर

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते खाका मन कुंचर उर खाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दशा बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन दशियले गुरु प्रसाद जीठी रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई जिन साज पछान्या तिन सर्पनी खाई सर्पनी ते आन छूछ नहीं अवरा सर्पनी जीती कहाँ करे जमरा ए सर्पनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई ए बस्ती का बस्त शरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आशा कहाँ स्वाम को सिमरत सुनाए कहाँ साकुत कहे हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही।

पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट

प्राणवासी चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रहे न कटू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला पूत।

रहाया, दस मास माता उधर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रकम जन्म खोया, पूर्व जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया, राव बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकड़े, तब है काहे रोया, जीवने की आस तो है जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हूँ, पांचों तत बराती, राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहो, नाभि कमल में बेदी रचले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबद पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिर है जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम विसारे हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं पेखो, यो दुख कासों कहो रे रहाओ, बाप सावका करे लड़ाई, माया सज मतवारी, बड़े पाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा, हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जय बाबिसुन नैन नारायण, हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब

कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा माया मोहित कीन जिन ज्ञान रतन हिरलीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जय पस ना देखे आग काल फांस ना मुग्ध।

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंहार है आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे काजी साहिब एक तो ही में तेरा सोच विचार न देखे खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई पदे गुने ना ही कछ गौरे जो दिल में खबर न होई।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरुदम दिया दिखाई आशा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह पे है बुरी अब की स्वरूप सुझा।

कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग तरयो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और तरयो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे हर गुण गाय कूद है अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म गति।

न जाना, सब जग अंत आयो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो ताना। तरन आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात इक कीनी, तह कांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कारगह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक पतीने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओई नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक से

आशा मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मत मत काटो जम की फांसी कहां करो जाती कह करो पाती राम को नाम।

आ जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ, सिंगच भोजने जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दग।

काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल, हम बपरे जस नीरा, सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधु मखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम।

यह चरण अरविंद पान मन पान करत पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत।

माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहा। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगड़ राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मये, प्रेम तगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुकुट भये। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समा।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

हयाती जग न कोई फिर रहा, जिस आखन हम बैठे केते बैठ गया, कटक कूंजा चेत दो सावन बिजलियां, सियाले सोहंदियां फिर गलबाड़ियां, चले चलनहार विचारा ले मनो, गंदेंदियां छे माह तुड़ंदियां हित सिनो,

काम से आई है, बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखा लिए जे मन तो वह कोई, झूठ लह जियो मांझी है मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरे, दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुरु सेविए मना, जित सेविए गोविंद प्रीत उपजे, अवर विसर सब जाए। हर से की चित धैर है, जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी। आप से ती आप खाया, कामन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समय। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये, जे लोचे सब कोई। पूरे की पाल विच्चो निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाई। कह नानक हर का पाना हुआ, कहना कछु न जाई। गुजरी महला तीजा।

आए दसवें द्वार रह करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो तिस पा

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास राव। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभु ओ है। मेरे भाई जना मोको, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सुध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वडे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर पुकारे। जो जन सुने सरदार।

प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागी वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत पगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुख ना

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी मैला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगिन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहा। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव दे आई, तन तन सबा सह।

राम जीवाया। हम हो गए लाले गोले गुरसिखा के, जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरे मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया। रहाओ जहाँ हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड पागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया। सब संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुरु संगत संग न पाया, से पागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारे, हर आपके गुरमुख मिले मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी, हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा, जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया। मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ। वड पागी हर नाम ते आवे, पाई रे मोको कोई आई मिले हर नाम दृढ़ावे। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे। रहाओ धीरज तरम गुरमत हर पाया, नित हर नाम हर सो चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपे लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से पागहीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अनद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुजरी महला चौथा कर कीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बन आई, तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाए, सो हम करें जो

पाए ता कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर स्नाना ब्रह्म आए थर सारी अनक सोच करे दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेत बुद्ध परदासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन के हर हरे साध संगत में पाया। माई खाट आयो कर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहा। हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिध पाई आश्चर्यो हर सोका आवो खर्चो कोट न आवे हलत पलत कह संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पंजो जगदी सुराव सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत काकड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

कर आया, कल कलेश मिटे छिन पीतर, नानक सहज समाया गुजरी महला पंजवा। जिस मानुख पे करो बिनंती, सो अपने दुख परया, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ, तित ही कामना आया, हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण न बूझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बस अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, पै पंजन हर राया, साध के चरण तूर जन बांचे, सुख नानक क्यों।

काले सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथिया लोग लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदक सुत पाई, संग बनता रथ हसया, जब अंति

नाम निधान सतगुरु दृढ़ आया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ।

सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चमियारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कौन पता सुबरंच अर

आपे भगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभु पूर रहो है एको जतर कथा गुजरी मेला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु नायो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो प्रभु को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लड़ायो रहाओ जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो।

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सल।

चित चित वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपे नानक।

कपटे अनेक जुगत करतायो, बिसरत प्रभु के दुख गनिये महामोनी खायो, करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो, गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो। गुजरी महला पंजवा, रसना राम राम रवंत, छोड़ आन व्यवहार मिथ्या, पज सदा भगवंत रहाओ, नाम एक आधार भगता, ईत आगे तेक, कर कृपा गोविंद दिया, गुर ज्ञान बुद्ध विवेक, करण कारण समरथ श्री कर, शरण ताकी गही, मुक्त जुगत रव।

सास सास अराध हर हर लह जाए मन की चिंग। मेरे मन जाप तब का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ। साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद। अटल अछेद अपेद स्वामी शरण ता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्सली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया।

दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट, हर हर नाम की मन प्रीत, मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव। जाप ताप अनेक करनी सफल सुमरत नाम, कर अनुग्रह आप राखे पै पूरन काम। सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ, गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण, अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी मैला पंजवा अहंग बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग, हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण जोग। मन तन बाची है जन तूर कोट जन्म के लह पातित, गोविंद लोचा पूर रहाओ। आद अंते मद आशा कुकरी विकराल, गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ।

निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रम के पुकारे कत नाई छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के।

तू समरथ शरण को दाता दुख पंजन सुख राय, जाय कलेश मिटे तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाय। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाव रहाओ। सतगुरु सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लागे, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी।

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिष्माया मन तत अविगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात कछियले शेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद ता।

बिस्तज अमृत पियाया गुजरी मैला पहला। कवन कवन जाचे प्रभु दाते ताके अंत न परे सुमार। जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार। तै जी जब तप संयम सच आधार। हर हर नाम दिन सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार। जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार। सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार। सर्वे जाचक तू प्रभु दाता दास करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभु नायक दिन दे तोट नाही पंडार। ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंत

पिलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताए बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाए। है जी काल सदा सिर ऊपर।

सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुरु वास हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बिन नेफल नेत करी।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अदुआर आई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना हित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तो सरणी लब लोभ।

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनकेरा आप सरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

तेरी प्रभु आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निध।

हरन मदमोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विध नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपै सिर तंदे मार।

दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मो प्यार नाम ना चेते शब्द ना विचारे यो मन मुक्का आचार हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी अपना आप उपायन तदो होर ना कोई मता मसूरत आप करे जो करे सो होई तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई ज्यों तिस पावे तिवें करे तिस बिन अव

आवे ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सब सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे सतगुर।

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी। अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक। कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा, राई दसवें पाए मन तो मैं।

हो जाए। हो मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आए। इहो जीव सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग एवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता, उपाय किते न पाई हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे, हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, होता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

गुरमुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुरु पुछे सत संजम कमावे होमे रोग तिस जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह है ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे होमे मेट समाए, नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बुलाए, कपट कीते हर पुरख न पीजे नित वेखे सुने सुवाए, दूजे पाए जाए जग प्रबोधे बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे जम्मे मरे फिर आवे जाए, सहसा मूल न चुकई विच विष्टा पचे पचाए, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छड़ाए। पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन हो मैं विचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे सच नाम चित लाया, गुरमुख अंदिन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया, जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया कित आया संसार, फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर, कूड़े लालच लग्या ना उरवार ना पार, नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार। पौड़ी। भगत सच्चे दर्शों दे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए, हर रंग रहे सदा रंग राते रसना हर रस प्याए, सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता हर जियो हृदय वसाए, बाज गुरु फिरे बिल लांदी दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान भगती खटिया हर उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया अंदिन नाम ते आया, विचे ग्रहे गुर बचन उदासी हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले ज्यों देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखे दिखा किने क्यों आन चढ़ाया, दूजे पाए पढ़े नित बिखिया नामो दै खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले ओना अंकार बहु गर्भ बधाया, छादन भोजन ना लेही सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया, एतड़िया विच्चों सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है काम क्रोध अंकारा, ए जम की सिरकार है एना ऊपर जम का दंड करारा, मन मुख जम मग पाईन जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा

लपटाए, गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए, तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए, नानक माया का मारण हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा, इहो मन केतड़िया जुग परमिया थिर रहे ना आवे जाए, हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाए, जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया ना किछ मरे न जाए पौड़ी, काया कोट अपार है मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहा आपे रस होगी, आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएदा।

आई वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चै शोभा पाई पौड़ी। बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूर कुसत अभिमानी परम पूले नदर नामनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा करें मनमुख मरे बिख खाए। ऊना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरमुख अमृत पीवे।

सेवा भगत बनी जाए। हर कै पाणे हर मन वसे, सहजे रस पी जाए। हर कै पाणे सुख पाई, हर लाहा नित लीजै। हर कै तख्त बहालिए।

जाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे, हों मैं विच्चों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करें से जन सोहने हर तिनके संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल फल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमत्ती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न

वाह वाह अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोए, वाह वाह कर्मी पाई है, आप दया कर दे। नानक वाह वाह गुरमुख पाई है, अंदिन नाम ले महला तीजा।

पाए खुआए, जम्मन मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना होवई ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समाए।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईयां दरगे।

तैया तिथै सोग विजोग ना व्यापये अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे

आराधना जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम कादिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साप जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माय बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम विण किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पंजवां चंग्याई आलक करे बुरियाई होए सेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर महला पंजवां कितिया कुटंग गुज्जा थी ए नाहित नानक तै सह टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोहि निर्गुण चै थाओ संत धर्मशाली है श्लोक महला पंजवां।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ। महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ आपना सब फल पाए आहे नानक नाम आराध्या गुरु पूरे दिया मिलाए पौड़ी। सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेशिया तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशिया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन के संग निहाल पापा मैल तोए अमृत साचा नाओ ओथे जापिए मन को होए संतोख पुखा त्रापिए जिस कट वस्या नाओ तिस बंधन काटिए गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटिए। श्लोक महला पंजवा।

पहला पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रत्ता मूल नानक जो प्रभ पाणिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाण सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होय संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछो ताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोय तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लदम बिखम ना डिठम कोई, जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी। होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए, अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए, पूरन होवे आस नाए मन बसाए, कोई न लगे बिघन आप गवाए, ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए, तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए, तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे, मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैडा हीड़ा सीतम, हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बंजे, मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सब आया, जन नानक विरले के पौड़ी। आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया, मन की कटिये मैल सात संग उठिया, जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप, बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप, तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया, ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपते होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही, तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया, हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया, पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया, नदरी आया इक सगल ब्रह्मेटिया, तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया, सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया, हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया, परख खजाने पाए से बहुड़ न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े, जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए, नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे, सोई वरते जग जे किया तुद तुरे, बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया, शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया, तेरे हाथ निधान पावे।

कोई महला पंजवां कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंदिन बिलपते जो सुंजे कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊंटत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा परम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत ते लक के कप ज्यो।

मुसमुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग ताजा बाहो बेई, तब लग बिसरे राम स्नेही।

रघुराई, गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहा सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सत

मले ना लाचे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाशे पंखियलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाशे कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिन तीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर थी जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बचरे थनो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा बिख अमृत बसे इक संगा तूप दीप नई बेदे बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर्पण।

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

बेसवा जोन वल वल अवतरे। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वल वल अवतरे। अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वल वल अवतरे। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बद तिलोचन।

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

हम विषम कई मुख लागे। सगली रहन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभु सुंदर स्वामी, मोय तुम सर अवर न लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गले, हर को संत बताओ।

मैं बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्महीन कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी।

मन हर कीरत कर सदू, दावत सुनत जपत उधारे, वर्ण अवर्णा सबू रहाओ, जैसे उपजियो तही समायो, ए विद जानी कभू, जहाँ जहाँ ए देही तारी, रह न पायो कभू। सुख आयो कह परम विनाशी, कृपाल हुए प्रभ जभू, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साध संग तद लभू। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अतनाना, होए गरीब बुलाओ रहाओ। अंत अडंबर माया के बिरते, तासो प्रीत कटावो, जो अपनो स्वामी सुख माने, तामे शोभा पावो। दासन दास रे दासन की, जन की टहल कमावो, सर्व सुख बढ़ियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद परम धार्यो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचार्यो रहाओ, कोट पराध मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतार्यो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता

देव नारी मन सगल स्यानत रही, कर्म कराउन हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ, आप नेक पय शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन मैं खाप उठापन हारे कुदरत की मना पही। देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहूं जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते। देव गंगा

जिन हर हर नाम निसाहा, देव नारी महिला पंजवा, मन कह अहंकार अपारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभु राखो राखन हारा करें कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभु नेरे हूते नेरे सिमरते आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रे करी न मोहत न कसा बिलंब हो काल नित नित हेरे अंग बिला

पहारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देवगंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो खा नहीं अगूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाई है मन रूचा खोज असंख्या अनित पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंदारी महला पन्नवा।

अगम अगम्मा कम महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव को गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमोद।

देव गंधारी महला पंजवां जानी ना जाई तासी गात रहाओ कह पे थारो हो कर कतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभु मेरा कट कट अंतर सर्व नेरा ताकि शरण आश्र प्रभु नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे चूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात

जो चीत अंधकार संगीन को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख गए हारियो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत।

अगणित अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर नाम से आई है मेरी जिंदगी गुरुमुख नाम अमोले राम। हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

कोई हर सब आन मिलावे राम। हाँ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी, मन सिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रकाशे राम। हाँ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुर में लाया मेरी जिंदगी, हर सज्जन हर प्रभ पासे राम। तन सम गुरु हर दसिया मेरी जिंदगी, जन नानक नाम बिगासे राम। राग बिहागड़ा महला चौथा, अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदगी। अमृत गुरमत पाए राम, हो मैं माया दिखे मेरी जिंदगी। हर अमृत दिखले जाए राम, मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदगी। हर हर नाम ते आए राम, हर काज बड़े लिख पाया मेरी जिंदगी। जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदगी। जो बालक लग दुख खीरे राम, हर दिन शांत ना पा।

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो में विचड़े मेरी जिंदड़ी दिख बांधे हो में जाने राम। जो पंखी कपो

ये गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर

हर मिलिया सुख सब जाने राम, तुर मस्तक हर सब लिखिया मेरी जिंदड़िए, जन नानक हर गुण गाए राम। हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़िए, पर द्रोही ठग माया राम। वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुर पूरे गत नित पाया राम। गुर अमृत

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिक औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम। नाम तुहार

तर्क कपाल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

कर जो संत इकत्र होए मेरे लाल जियो, अविनाशी पुरुष पूजे हाराम, बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो, ए मन तन सब अर्पे हाराम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे, पाग मस्तक होए जिसके तिस गुरु नाल सुनेहा, जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा, देह विस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया।

खान पान सिगार बिरते हर कंत बिन क्यों जी जिए। आशा प्यासी रैन दिनियर रह न सकिए इक तिले, नानक पयम कै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रियो संग दर्श ना पाये राम, आवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुगद अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम, हर नाम जपत सो हंस प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊंच अगम अपार, बिनवंत नानक सफल सब किछ प्रभु मिले अति प्यारे।

नानक शरण समरथ स्वामी पैज राखो मोरे। जाके ही छड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

सतगुर कह तै पन ना करो रह अंक समाए अंदिन सहसा कदे न चूके दिन सब दे दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सब ला।

आप जमाए पिसावे, आप पकावे, आप पांडे दे परोसे, आपे ही बैठावे, आपे जल आपे दृष्टा आपे चुली परावे, आपे संगत।

बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख

कहे कथिए ना पाइए अंदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन सुजे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृत्ति आपे अकथ सकी आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तह के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार, दिख

पार पवह जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे नारद तुझ करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुर सेवे थवर ना पावही मर जमे आवे जाहे, बिन सतगुर सेवे फिका बोलना नाम ना वसे मन आए, नानक बिन सतगुर से

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे है। मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे।

पंत सब आपे आपे ठाकुर दास पया आपे दस अठ वर्तु पायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे चोदे आपे बख्शे करे दया आप अपुल न फुले कभी सब सच कपाव से सच किया आपे जिना बुझाए गुरमुख इन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम न सुने।

कौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू इहे लाए हो। सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो। नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अगे हर्षों केल करे हो। पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे, आपे ही मोह पाए। आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए। जन नानक वडियाई आखे, हर करते की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा, मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया।

सो सब कुछ पावे जिसनों कृपा निरंजन केरी, सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी। सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे।

तुर खसने का हुक्म पाया बिन सतगुरु चेते आना जाए सतगुरु मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरखा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाल सियाना आपे मोनी वर्तदा आपे कथे गया।

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाओ सब पदार्थ

सतगुरु मोह को हर दिया, सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करू।

160 वर्ष है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कीस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वडहंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जात पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करनी पार, गुरुमुख नानक परवार साधार, वढ़ंस महला तीजा रसना हर साग लगी सहज सुवाए, मन तृप्तिया

पुरते नाम पाया जाए सच्चे शब्द सच समाए ए मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसे मन आए कर में पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड पागी जिन हर नाम से आया गुर पर सादी मन वसाया वडहंस महला तीजा हौ में नावे नाल विरोध है दोए ना वसे इक ठाए हौ में विच सेवा ना हो वई ता मन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हौ में जाए रहाओ हौ में सब शरीर है हौ में ओपत होए हौ में वड्डा गुबार है हौ में विच बुझ ना सके कोए हौ में विच पगत ना हो वई हुक्म ना बुझिया जाए हौ में विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले हौ में गई ता सच वसिया मन आए सच कमावे।

बार अपने गुरु को जाता रहा। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया। हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी।

से मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा फिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर तीर्थ पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सत सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं देश नेहा इस मन तन अपना देवा नित पक्का फेरी सेव कमावा इस आगे पानी तोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा नित नित सद हर के

रहाओ लाख भगत जाको आरा दे लाख पति सर तप ही साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्त जाने तोरा है कोई साजन पर्दा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वढ़ंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जी वे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजाने सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अवनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वढ़ंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को

तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राशा वड़हंस महला पंजवा।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभु कै निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंज

रे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई।

अब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए, जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सो रहा समाए, हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जाने।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खट्याए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आइए नाता सो प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी। नाम तुल ना समतरे नानका जिन नाम मिलिया। कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम पुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही ऐला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सुहा

राजो ता तेरा सदा नहीं चल, एहो कभो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जो ए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हों बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे। जप

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप वाणी चिच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरह ठिम ठिम आप संदूर है, श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी, बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, अपने पिर कै रंग रती मोइये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया, आप गवाया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे साहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोइये फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वेख हजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता, जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे, नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे, सुहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदर नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया हों मैं मार मुये।

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड़ पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसें कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए

पथ कोई पढ़ पढ़ पंडित वाज बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यों तिस दी वड्याई राम ज्यों तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बक्से सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाए वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है केवा पारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पीजे राम रसना हर रस पीजे अंतर पीजे सात शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि जय नानक नाम रते से निर्मल होर हौं मैं मैल परी जय पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ फूक दे किस पे करें पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया केवा पारा राम माया केवा पारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख्यों लागा बिष्टा माए समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई न मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मुए गावारा माया मोह मन रंगिया मोहे सुध ना काई राम गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच परे पंडारा गुरमुख होवे सोई बूझे सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिले होर के

सब दुख है खोटा एहो वापारा राम पूर बोल बिख खावणी बहु वधै विकारा राम बहु वधै विकारा सहसा एहो संसारा।

आपे सच्चा बख्श लहे, फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा, गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई, सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रते अंत निबेरा, नानक नाम रते से सच समाने, बहुर न पवजल फेरा। माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम, माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई, जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई, मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई, नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुझ जेवड़ अवर ना दाता, सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाए, जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया, दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया, कर मैं निज कर पाया सतगुरु दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

राम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे हर नाम नवंग निध पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीर आराम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

हौ गुरु बिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम से आया, जिस कारण हो तू सुनेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृश्य हर एक को जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुरु बिन खरी निवाणी, जिना सतगुर

हर हर नाम मेरा प्राण सखाए, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हों वारी गुरसिख नी प्यारे। हर आपे पुरुख निरंजन सोई राम। हर आपे मूले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्यान पलया न जाई, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक।

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम सिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना

नेफल जन्म किन बिछा दवाया ते साकत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ सूखे पागहीन हर दूरे हर हर तिन सा दर्श ना करियो जिनी हर हर नाम ना प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक हम चात्रिक, दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदाता।

मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाखे पाप सुन तापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोग तय शरीरा। अनदिन सहज समाध हर लागी, हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनुतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर

तन प्रेम हर हर लाए चावत मन जिने गुरुमुख जी किया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु वखाणी हर रंगे तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे।

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुरु ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत नित जानिया सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया जन्ना।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान श्लोक।

जन साख अवाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अम्यो उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कन्हिए वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकम छड़ावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुरु।

हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड़ कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया।

सवारनहारा। सूरत महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर कट अंतर है।

के। सतगुर मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तां बूझ पाए। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

पार। गुर शरणाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा, हर पहला

हर का नाम सच्चा मन वसिया, नामे नाम समाए, बिन सतगुर सब जग बौराना, मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम पुला ना रहाओ, त्रै गुण माया परम पुलाया, हों मैं बंधन कमाए, जम्मन मरण सिर ऊपर उभो, गर्भ जोन दुख पाए, त्रै गुण वरते सगल संसारा, हों मैं विच पत खोई, गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

पूत के पाला, सूरठ महला पंजवा कर पहला चौथ के। गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हृदय पार, साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार। जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार, साध संगत को वारिया भाई जिन एक ओंकार आधार। सोई सत आराधना पाई जिसते सब किछु होए, गुर पूरे जान आया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी, बिन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी। आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। सिमरत शास्त सो दिया भाई बिन सतगुर परम न जाए, अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए। चारे कुंडा सो दिया भाई

अच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस पर आपत होए, ओट मदे जन पाई है भाई।

आप न थापे साध संगत बुद्ध पाए, साखत का बकना यूं जानो जैसे पान चुराए। कोट पराद अच्छा दियो ए मन कहना कछु न जाए, जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाए। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही, अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा पेट्यो वड़ पागी, मने पया प्रगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा, अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहोन हारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया राखे। नानक को गुर पूरा फेटे हो, सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता, तिसके पाने कोई न फूला। जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है, अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई, सोई ज्ञान।

कहो नानक जिस करे दयाला ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरक को ना पहुंचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू धारा कहो नानक गुर बिन नहीं करिए एह पूरन सत्य बिचारा। सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा किलबिख काटे निमक अरादया गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महाकृपत मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त पुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याय सोई करण कारण सम

साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाते प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखबा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो।

मेरे सब कला बने आई प्रगट पाई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

पावत से भयानक भया, करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया, जह प्राप्त ते लया, एक रतन मोको गुरु दीना, मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर न हुआ, भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यो जा का मन लीना, सेजन कृत अभाई, गुण अमोल जिस हृदय न वस्या, ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनबाई, जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई। रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ सरने, जे नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मैं गनने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए, ते महा आनंद रस करिया, जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए, ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा, नानक से पकरी संतन की, हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा, राजन में राजा उरझायो, मानन में अभिमानी, लोगन में लोभी लोभायो, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावे, तेख निकट कर सेवा, सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे। रहाओ अमलम स्यों अमली लग पायो, कूमन कूम प्यारी, खीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या में विद्यांशी रचिया, नैन देख सुख पावे, जैसे रखना साग लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रवताने। खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना। हम संतन से बन आई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा भाई रहाओ। संतन से मेरी लेवा देवी संतन से व्योहारा संतन से हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का खोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे। सूरठ महला पंजवा जेती समग्री देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी।

मन पावे। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सभा से आये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई।

जीना। साध विकार बिखे रस्मा तो असंख खते कर फेरे, नाम किसी प्रभ पाहे विनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला।

कौन अंधेरा, सज प्रेम भगत प्रभु नेरा, रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया, मन तन रहे अधाई, जत कत पूर रहो परमेश्वर, कत आवे कत जाई, जब तक समझम ज्ञान तत बेसा, जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, ताकि पूरन पाला, कल कलेश मिटे दुख सगले, काफी जम की फाता, पहु नानक प्रभु कृपा तारी, मन तन पे बिगासा, सूरठ मैला पंजवा, करण करावण हार प्रभु दाता, पार ब्रह्म प्रभु स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभु अंतर जामी।

साची दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग

मन वस्या अविनाशी, ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे। चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की छिप जाई। नानक दास पांके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने। जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने। रहे न कछुए छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक दिकारा। बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा। देख वाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई। काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सूरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपुरे की बाणी जप अंग करो नित प्राणी। हरखाचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये। हर विसर न कभू जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा। जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा। गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली। आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी। संतो यहाँ बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी। रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। पोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा।

सूरत मेला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ एती तरते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल।

जगत जीवन कैसे पावे। सोरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत कोई

उधारे दर्शन देखन हारे गुरपुरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिरछ बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ आनंद विनोद मंगल।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सूरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नाना रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराछत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याये हम दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सिसलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, कोए पाप है सब पावन जन नानक सुख कर आया। सूरत मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी, बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा, जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रभ त्याये, हर मंगल नानक दाइये। सोरठ महला पंजवा, सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा। पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी, हर की प्रेम।

हम सवारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम।

आया हर संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहने

पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म विटो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाके पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपा।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

उपाय सुवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांची बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सूरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम

आपे दाता आपे भुगता, क्या इन जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे सब अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बंत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, ए पुन पदा।

हर के नाम की वडियाई, आप पहर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभ की अकथ कहानी, जन बोले अमृत बाणी, नानक दास वखा।

प्रभ अपनिया संता देव है, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुवाखिया। सोरठ महला पंजवां, सोई कराए जो तुद भावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई, प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रति।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया।

सदा हर जाते, प्रभ बालक राखे आते, शीतला छाप रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी पग

हर हर हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर सब कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म पूर।

साच वखाना सोरठ महला पंजवा ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

हमारी, प्रभु राखी तेज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छे सोई फल पावे, बेटी आस न जाए रहाओ। कृपा करे जिस प्राण पत दाता, कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नजरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला।

निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल। सदा सदा सुख पाइए रहाओ जो कामी काम लुभावे। क्यों हर दास हर जस भावे।

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक कै मुख साया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वडियाई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म

प्रभ अपना हृदय ध्याए, कर सही सलामत आए, संतोख पया संसारे, गुरपुरे ले तारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणनी, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुरपुरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे

तिसें प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस्त्र दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पावनिध पार उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपानिद पूरन खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कतहु बाता भगत सिर पाओ दियो जने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम स्यों कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो अर्गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर मादो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भजले जात अवसर बीत सोरठ महला नाम मन की मन ही माहे रही ना हर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही राव दारा मीत पूत रख संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुग हारयो मानस दे लही नानक कहत।

परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उधारो रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरह पारा सोरठ महला नामा प्राणी कौन उपाव करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ कौन कर्म विद्या कहु कैसी धर्म कौन फुन करी कौन नाम गुरु जाके सिमरे पाव सागर को तरी कल मैं एक नाम कृपा निद जाहे जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन एह विद वेद बतावे सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जा को कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नामा माई मैं केविद लखों गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई साध संग कब हो नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख ले हो सरनाई सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के विद्रोह को ताहे राहो वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अप

लागी। शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमें पावे, हृदय शब्द सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेत मनुआ ना डोले, तावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसे सुख पाई, जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूझी तुझे बुझाई। आस निराश रह बैरागी, निज कर तारी लाई।

जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से ही साध जान जो गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चितराई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खान शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई

कह पारी। दुर्मत कणे विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम ना पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई। पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तथ। जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख। एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए। बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछू न जाए। गुर मिले पौ मन।

गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पाई है प्यारे।

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत कम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साथ समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चाड़ मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस नेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहार है जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सुहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए।

रोग पुंचाए कुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जोगुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्याण पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातिया प्यारे कूड ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल ले प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे एह बिद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दातारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडोत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

सच नाम चित लाया। बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मनमुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नी जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यों छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ।

कहियो हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ति है पाए मोख द्वार। ए भोजन अलभ है।

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख।

जा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर।

प्रकृति सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर सके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुके न संसार विचों जाए नानक नाम विहुणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार

आए अंतर अज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए मन हाथ सहज ना बीजियो उखा के अग्गे खाए नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले साहर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दे।

जी पाए। सतगुर अपने घर वरतदा आपे ले मिलाए। नानक सतगुर मिले सब पूरी पई, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन

हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिरके पाने।

चौथा हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित हर दासन के वश है जो जंती के वश जंत हर के दास।

सतगुर मिले ता पूरा पाया, हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना। तू दाता दातार तेरा जिता खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहार है।

कपते खपे खपाई सतगुर का पाना चित ना आवे अपने स्वाय फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। महला चौथा मन मुख माया मोह व्यापे दूजे पाए मनुआ फिर नाहे अन दिन जलत रहे दिन राती हों मैं खपे खपाहे अंतर लोभ मां गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चित लाहे पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

करते मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझ आपे सिष्ट सिरजिया आपे सुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई, वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई। सोदे राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओइले जारे ओइले गाडे, तेरी गत दोहू ना पाई।

पाई। दर्ब संच संच राजे मुए, गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा राव कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता।

खारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वह सोई। कह रविदास।

तीन पकरफा क्यों और काट्यो राग कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी आपन बापे ना किसी को पावन को हर राजा मोह पटल।

मारा चरमटा गांठ न जनी लोग गठा वे पनही राव पार नहीं जे तोपो नहीं राम भी ठाओ रोपो लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा हाँ बिन गांठे जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा मुझ जमस्यो नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत की खनकी।

नाही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन तीखन, पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया।

सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर एक कहत है सच्चे परवरदिगारा, जो तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना। नानक दिन मैं सो किस पाई है पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिललाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीण ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नजरी नानक नहीं कोए, कनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

ति करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दानस बंग सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मलकोवे पढ़या बूझे सो प्रवान जिस सिर दरगे का निशान। तना श्री मेला पहला करती जा।

कहो, सहस मूरत नन एक को ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस पद गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए, गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम जिनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम वासा, त्रासरी मेला तीजा, कर दूजा चौक दे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन परगासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर के सह सुवाए, पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, त्रासरी मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अस अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

वडियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक सास रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा।

अपने पथ खोए। गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पथ उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम रात से पगत दृढ़ाई, पगत

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभु साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी शब्द सुनाए। प्रभु साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अगन बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ता आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर दे वडियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लड़हारा। मन असाध सा दैजन कोई, अचर चरे तौ निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हों मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार। मन मुख फूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमती पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख फूले सब मरें गवार। पर जल डूबे ना

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान है।

जो हर सेवै संत तगत तिन के सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आज कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वड।

नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथा भी तना श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुरु सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम तिसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरत प्रभु स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूछ।

के काले। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। तनासी मेला चौथा, हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह न सकूं एक राती, जो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगा, हम ले न सके अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जप्यो, गुर रंग चलू ले राती। हर हर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग बाए हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई। हर दरगे पावे फिर जन्म न आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनाश्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय त्याय हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर दिनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनाश्री मेला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ। जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। हूँ तिन कै सब दलिहारे जाऊं। रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम दियो सोई हो पाओ। दीन

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे ओट पराध मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे पगत सो है दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। त्रासरी मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

इसके बहराई ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन।

दूर करायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो तीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल नहीं अल सरद।

प्रवास सदा सुख मन में, सब गुरु पूरा पायो राव, गुण निदान रिद पीतर वसिया, ता दुख परम को पागा, परि प्राप्त वस

डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिकानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल थैली हुई है तांते कनक वखानी। प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर्पूमन ताकि तृष्ण न बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूजी। दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे न भूखा उद्यम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी पर गृह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्तत ताकी कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो ममता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर जे हर हर नाम दृढ़ाया।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैत कोट अगमासे, भगत बांछे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल विख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई सास सास मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रव्यो सब मध्ये जब कत पे सो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जात पात पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अघाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पे सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुर आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो।

तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके बोले धनात्री मैला पंजवा। पूजा वर्त तिलक इसनाना, पुन दान बहु देन, कहू न पीजे संजम स्वामी, बोले मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जगत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सबका को, बिकम न जाई लैन राव। जाप ताप प्रमन गसबा कर, उर्द ताप ले गैन, ए विद नै पतियानो ठाकुर, जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पेते, नानक सुख जन रैन।

नंगा बहुर न कछू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्को अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इन सो प्रीत न लागे संत संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संत उबार हर के दास की चित वह बुरे आई तिसी को फिर मार रहा जन का आप सहाई हुआ निंदक पागे हार प्रमथ प्रमथ ऊहा ही मुए बहुड़ गृह ना मंजार नानक शरण परे दुख पंजन गुण गावे सदा अकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अब हर राखन चितारिया पतित पुनीत किए खिल पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण फुंगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांचे नित नानक

गुरु समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ, सुर्ग मृत पयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण, हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये, पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस देश।

चाल संग ना चाले तिन स्यों हीत जो गहराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा साथ तरम नहीं पावे दीठा चूठ तो क्यों रचियो मीठा दात प्यारी विसरिया दातारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तर्म सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे।

जाने, पाप करे ता पछोताने, जो तुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान, नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रब मेरा, तनाश्री मैला पंजवा, मोय मस्कीन प्रब नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रब रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की सोबा अत्मस्कीनी, संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के पगत गोविंद, सूख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र, तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम, दे कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुणतास, प्रभ दयाल किरपाल हजूर, नानक जीवे संतां दूर, तनाश्री मैला पंजवा, सो कत डरे जे खत्म समारे, डर डर पचे मन मुख विचारे, रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव, सफल मूरत जाकी निर्मल सेव, एक निरंजन जाकी रात, मिल साध संगत होवत परगास, जीवन का दाता पूर्ण सवठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए, जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे, जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगे मिले तिसे ही जाए, सही पगत जे साचे भाने, जम काल ते पए निकाने, साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार, काट काट अंतर सगल आधार, नानक जाचे संत्रेनार, तनाश्री मैला पंजवा, इक ओंकार, सतगुर प्रसाद, कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कहे संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी, सामसलत परवान रहाओ, पत परमेश्वर गत नारायण, तन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विधि जाति, तनाश्री मैला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ से पाए, कंठ लाए गुरु राखे, संसार सागर में जलन न दीने, किने न दुत्तर पाके, जिनके मन साचा विश्वास, पेख पेख स्वामी की शोभा, अनद सदा उलास रहाओ, चरण शरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो, नानक पगतन का अंकर राखियो, त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो तै हजूर, दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याई, ईत ऊत नहीं बीछड़े, सो संगी गनिये, दिन सजाए जो निमक में, सो अलप सुख पनिये रहाओ, प्रतपाले अप्याओ दे, कछ ऊन न होई, सास सास समालता, मेरा प्रभ सोई, अचल अछेद अपार प्रभ, ऊंचा जाका रूप, जप जप करे आनंद जन, अचरज अनूप, सामत देव दयाल प्रभ, जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभ, रेन पग सादा, तनाश्री मैला पंजवा, जिन तुम तेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ, अनद मंगल गुण गाओ सहज तुन, नेकल राज कमाओ, तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ, प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाशन पाज

पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खसम निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कबू गुर के बचन आधार। जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई। अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरदीना जियो। किस त्यों ना लाई हीत, जा को किस ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय। तना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना। देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल चले लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद बिचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मेला पंजवा, कर अठवा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जप तत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए नशा कह जा ले रहाओ। निर्सन कौ तन अंधले कौ टिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनासरी मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, सनासरी मैला पंजवा। दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवार, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनासी मेला पंजवा, जान को हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै। जान का सतगुरु पूरा, ठाकुर गा ये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। सनासरी मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे ओ अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेक करे निर्वाने जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ता के उतते उतते आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनाश्री मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जा के मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल राव नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जामे संत बसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे सनातरी मेला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता बिरस ना कतहू जात सत गुरु पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने के चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी मेला पंजवा
चतुर दिशा तीनों बल अपना सिर ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेते, दयाल पुरख बख्शंद।

औखी करी न देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रपाले। प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पड़े साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। सनातरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राग्य हो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन नानक।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम। मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम। चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम। गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुर्बान। तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान। सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ। चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो। शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन। तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक। मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख। कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक। आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक। नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक। तनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम। मां संतोष होवे गुर बचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ। महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल। अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल। सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम। जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम। तनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार। निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ। जय जय देखो तय तय स्वामी कोई न पहुँचन हार। जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया तत्चार। करण हार रखवाला हुआ जाता अंत न पारा वार। नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक का डे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु तारो कृपा कर तारो पूजा गह कूप से पार ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साध पूरे। प्रभु बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुणे सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एवं महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एवं पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा। अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन चिन्ह में तारा। रहाओ कोई हो आकर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतर एको जानो, के गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। सनासरी मैला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, तैन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सास्यो मन न लगाना। जन नानक को तन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनाश्री मैला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनाश्री मैला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यो उदर परो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, होमे मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सालाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

मुड़ जायो। मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया। अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ। अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे। कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे। परे रे सगल वेद न चूके मन तेद एक खिन न तीर मेरे करके पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए अहं बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। सगल अश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए। कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे। जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खै। मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत होए हमारी। तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद पे त्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाच।

गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना। साथ ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे। आनंद अनदिन हरख साचा, दुख किल दिख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी तसंगम सत्सते। आराध एक अंकार साचा, नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मानिया मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी, पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। तनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा, जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया, फेर न सके कोई। आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाए, सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा, नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दे रहा वाद वदन।

नानक भगत सोहंदर साचा है साचे के व्यापारी भूख प्यासो आस क्यों डर जाए सा जियो सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए सा जियो सच नाम ते आए साच चवाए गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अंधन नाम वखाणा करणी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी सनासी संत मैला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो लेख ना मिटी पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी तन जोबन आख की छाया बिरद पय दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या बूढ़ी कर कालो गुर कह पाए चलो साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए अन दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव पगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण पिरस्यो प्रीत प्यारी पिर कर सो है नार जे पिर पावे जियो झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो झूठ अलावे काम ना आवे ना पिर देखे नैनी अवगुणियारी कंत विसारी छूटी विदन रैनी गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए तन सुहागण नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती तिर रली आला जो बन बाला तिसरावे रंग राती गुर शब्द विगासी सौरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

सहज नाम समावे। आप करता करे सोई, आप दे सा पाये, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आये जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरु जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी अन दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा, श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा, नगर करे ता सतगुर मेले, अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे, सत संगत मिले वड़ पाग, ता हर रस आवे जियो, अन दिन रह लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे, सबा अतीत बैरागी, हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सो दोहा ते मुक्ता, जो प्रभ करे सो भावे, सत संगत मिले वड पाग, ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी,

केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन का सी तजे कबीरा, रमैये कहा निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कासी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई।

राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज दिवे बड़ियाई, अंत न साहू संग सहाई। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कच नाहे तेरो काल अवधियाई। अजामल गज गन का

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाए जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई दुर्वासा से करत ठगौरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिटनावो सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो पाछे बहुर नावन पावो अमृत बाणी करते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक पगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो इत कर पगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहा जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला जो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला जो

रे मन रामैया, बारिक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा हर का बागरा, नाचे पिंडी में सागरा रहाओ।

चमकारणा। पतित पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव दिन भगत नहीं होए तेरी कह रहा।

मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंदस काए फूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी। रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी, स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे। स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा, कर्म कर अरुण पिंगलारी। अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी, तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी। कर्म कर कपाल मफी तसरी, अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर। शिखर सुनागर नदी के नाथं, कर्म कर खार मफी तसरी। दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण, बन फल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कछोटी मफी तसरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले, राम चे नामं बदत त्रिलोचन। राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को। रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पैता

पूजो पाती काया बोखंड खोज ते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी पगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का गऊ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूर पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलन था जैत सरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैत सरी महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जय श्री मैला चौथा सत गुरु साजन पुरख वड पाया हर रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुर बचनी बिस हर काडबा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर
हर नामे हर रस चाख बा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लाग बा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए बा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा। जैत करी मैला चौथा, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाई है सतगुर माजा, हौ बलिहारी सतगुर अपने। जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वडपागी। सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना। हर किए बहुगुण साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन। हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा, जैत श्री मैला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई। सतगुरु हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पए है माया, बिख संचय लाए जकीड़ा। हर के अर्थ खर्च नह साके, जम काल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जैत श्री मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख।

सारे हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माडो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे निरपव ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक।

देहो संदेशरो कहियो प्रिय कवियो विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो बेकुमार बे अंत बड़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को जैसरी महला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसे बसेरा रहाओ सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से प्रम अंधेरा थान सनंतर सबनी जाय जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी से आनप चिंत विसारी अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैसरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो माया करा रहाओ ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैसरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यो वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैसरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देहे आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ हर शरणी अपनी कृपा करें चरण कमल ना

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौताय।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा कै मरबे को बिसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा रहाओ जाको जोगी खोज तुहारे पायो ना ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जग तुम्हें हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो।

संत। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया।

जय। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया, जन नानक गुरु पूरा।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहां पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

सदाई मां मंगल रहस थिया फिर दयाल सद नव रंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिय लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिलेन थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान संतर आप जल थल पूर सोए जल थल मई अल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम ते आए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्योहार बनता ए करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस भोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

अंड ब्रह्मंड पाताल दी प्रव्याव सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास।

कर रथ आस दिए रच भले संजोन। सुते बन का साजन सेवक दिए प्रभ देवन जो हर सिमरत तन।

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तात्र में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दास मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

ओ मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर ध्याय कै मन इच्छ पुजाई। वडे भाग

शरणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने दयाल।

गुरु नानक पतत उधारणे भोजन भिखम असदाम गुरु बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

اجو نہ پتے آئے نگم بھے ساکھی گوتم ناز اما

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साज संगत स्यो। एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावें बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो।

मनाया। पयो अनुग्रहो जाको प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया। साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा। लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा। मस्तक ले ले लावो महापतित ते होत पुनीता। हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो। कियो त्वारो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है। आन न कथु तावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी। सगल रेण होए रही है साधु संगत होए परापत। ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे। तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता। मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग ना चाले। मिले कृपा गुण गाम रहाओ। राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम। पाए पाए बहुविद को तावे सगल निरारत काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम। कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम। टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे। जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी तप है। नाम मेरे परवार है। नाम सखाई सदा मेरे संग। हर नाम मोको निस्तार है। विखे विलास कहियत बहुत तेरे। चलत ना कछु संगारे।

रोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहले सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण। करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता। नानक हर हर टेक, टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप, टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

लप्यो रे मूड़े कछु ना सोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो फिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके ग्रह में आया, तोड़ी महला पंजवा कर चौथा दो पदे ओंकार। सतगुर प्रसाद रूड़ो मन हर रंगो लोड़े, गाली हर नी न होए। रहाओ हौ टूडे दी दर्शन कारण, बीती बीती देखा। गुरमिल परम गवाया है, ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो। लेख लिखियो तुरमाते, ए बिद नानक हर नैन अलोए। टोडी महला पंजवा, गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे। हियो महराज री मायो, दीहर न्याई मोहे।

सगलो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासित मिट्यो रे। जा को लहणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्वास न पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा, कर पंजवा, दो पदे एक ओंकार।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना विचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन, तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान, तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दह विस रव रया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब के लिख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी विमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तक विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई, सह नानक अब नाहि अनत गत, दिन हर की शरणाई।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो रहाओ, पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ, राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव

कुम्हार के पर हांडी अच्छे है, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे है, रांडी सांडी हांडी दो, बाणे के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सिंह गो, देवल मदे लीग अच्छे है, लीग सीग हिंग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल आछे, केल बेल केल गो, संता मदे गोविंद आछे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम।

सुन मन अकथ कथा हर नाम। रुद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम। रहा नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको। गुरु सतगुरु दान दिवायो रहाओ किस जन को मन तन सब देवो। जिन हर हर नाम सुनायो तन माया समते तिस देवो। जिन हर मीत मिलायो किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हो में रोग गवा।

रहाओ। जो कुछ करे सो आपके स्वामी, हर आपके कार कमावे, हर आपके ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे, हर आपे पंच तत्व विस्तारा, विचता तू पंच आप।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज पुलंग महला पहला कर पहला

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंसै भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला त्यागड़िए मानरा का

काजिया बामना पीजल थकी अगर पड़े शैतान मिला लो। मुसलमानिया पढ़े कितेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो। जात सनाती होर हिंदवानिया एदी लेखे लाए वे लालो। खून के सोयले गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो। साहिब के गुरु नानक गावे मासपुरी विच आत्म सोला। जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला। सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला। काया कप्पड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला। आन अड़त्र जान सतान में होर भी उसकी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आख है सच सुनाए सी सच।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साए साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याय रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छदाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गा है। जो दिन सह सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक प्रभु।

खुद राखे दा सृजनहार, जिन पैदा तू किया सोई दे आधार, जिन उपाय मेदनी सोई कर दा सार, कट कट मार।

आवे गुण तामन तामन करे तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया तो यारे सोई, जेबो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। तात मिले कुन तात को लिव लिवे को तावे, गुर पर सादी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खर सार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो

हरतियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम तुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा गुर सेवा के पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया कोई आप छुटे परवार सो सब जगत छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो

से आप हर पाया हर दर्जे पहनाया हर आप गलाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दी जय हम तिन के चरण पखाल दे तूर कोल कोल की जय पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम मेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुरु के त्या रंग रलिया माने सतगुरु दाता आपकी है उस परे पसाओ।

जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा मात पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

जीवित गुरु उपदेशिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार कै दो प्रभ सरनाई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देव कतेब इस तरह पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शेर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

यार क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हो बल बल जाओ नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ कुजा आमद कुजा रफ्ती।

चंगी हजार आलम एकल खाना हम सुने पाता सामने बरना अस्पत गजपत नर नरिंद नाम के स्वामी मीर मुकंद।

होई निराश जमावो। जपो साए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन की थी हाथ करो सुन नेत्रों नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया है इन विद अमृत पावो। मन संपत जित सत्सर नामन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई। तगत ही नानक जन जमते हौसला ही सच्चा सोई। सुही महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसे ना बाहर जाए अमृत शोध काहे बिखाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे बांधन बांधया सब जग पवे। सेवा करे सोचा कर होए जल तल मैयल रव रहा।

जोग ना कुंसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना संगी वाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश जी संकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, सतगुरु पेटे का कैसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सुनजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मई

इन विधि चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सत संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंग लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर गौर न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के त्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित न आयो मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलेत पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पायो खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा टूट टुडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे।

नानक हर रस हर रंग समावे, तू ही महला चौथा। जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए, हर रस जन चाखो जे पाए, तौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार, मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रघुदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भय।

छोड़े हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका मुख अखर तीरथ तिन तिल कढ़ाए। जन नानक तिन को अंगिन परसे जे कृपा करे हर राय। सुई महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिख लिलारा। तिनकी वकीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वे तो उनकी रीस करे तिस हल्त पलत मुहकारा। से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा से हर पाई है सिर हिंदक कै पवे चारा। जिस कर वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौ पीढ़ी आग जुगाद बकीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा जिते हर आराधी है तिथे हर मित सहाय। गुर कृपा ते हर मन वसे होरत विद लया ना जाई। हर तन संची है पाई जे हल्त पलत हर होए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है होर थे होरत उपाय हर तन किते न पाई। हर रत्ने का वापारिया हर रतन तन व्याजे कच्चे के वापारिये वात हर तन लया न जाई। हर तन रतन जरे हर मानक हर तने नाल अमृत वेले वत्ते हर पगती हर लिव लाई। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही। हल्त पलत हर तने की पगता को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। ए हर तन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया न जाई। हर तन को उचका नेड़ न आवई जम जा गाती दंड न लगाई। साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया तिना एक विख नाल न जाई। हल्के विशाक दुहेले पै हथों छुड़ गया अग्गे पलक साकत हर दरगे टोई न पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनो दे तो हर तन लग चलाई। इस हर तने का तोता कभी न आवई जन नानक को गुर सो जी पाई। सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे सो भगत को प्रमाण। किसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसिया हर पुरुष भगवान। गोविंद गुण गाये।

जो दूजै पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो

कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब दुनी निधाना, तुमरी मैं मां बरना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम कर तोई, ज्यों पावे त्यों राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आ गए अरदास, मैं होर थाओ ना ही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे, विचे धरती विचे पानी विच काश अगन तरी जय, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जय, हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती चर

क्या तुझ पे आग सुनाइए, बुरा पला तुझ सब सूझे, जिहा को करे तिहा को पाइए। मेरे साहिब तू अंतर की दिल जाने, बुरा पला तुझ सब सूझे, तुझ पावे तुवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस पगत आए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सबको तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करें केहा को होवे, बिन नजरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो खाए पाए। कोई महला चौथा, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुकत पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुरबचनी जिना जपया मेरा।

कर सकी अपना कीता किसु न होवे ज्यों हर पावे त्यों रखी है मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किस कर हम साके ज्यों पावे तिवें बस रहाओ सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जिहा तुद तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद शिष्ट सब साजी कोई छेवा करो जे किसीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बुझावे इक मनमुख करे सिरोवे हर की वड्याई हों आख ना साका हों मूरख मुग

निकट वसै नाही प्रभु दूर, लोक पतियारे कछु न पाई है, साथ लगे ताहों में जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे, दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम से आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे तान है रास, कर कृपा अपनी पक्षि लाए, जन नानक प्रभु सदा से आए। सूही महला पंजवा। तन स्वागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने, तैस्यो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे, सोई कमावे जो प्रभु पावे, सास सुहागण अंक समावे, गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे, कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा परपूर, जन नानक गावे देखा दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल सामग्री में कर की जोड़ी, आस के आसी तिर को लोड़ी, कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे, गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुरु परम चुकाया, सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा, प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज बिछाई सर्द अपारा, नवरंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा। तुम क्यों ही हो मिलन प्रवताई, खोज करो देखो प्र जाई, सुन सदेश रो प्र गृह सेज बिछाई, परम परम आयो तो नजर न पाई, किन विध हीरो तीर निमानो, मिलता जन हो तुझको।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन करते चरनारे, पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदाते पुरुष वाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बूझे ना आना, माया मोह रंग लपटाना। रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा, सात जना का दर्श ना जीता। कबू ना समझे अज्ञान गवारा, बोर बोर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिके नाद करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाए चूठे सब तंदे। रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहि साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, पर में पूला साकत फिरता। नीर बिरोले खप खप।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, तुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतीरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमुख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सो।

किसे न बिसरे काहू बेरा रहाओ। बेखरीद हो दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा। कोट दास जाके दरबारे निमक निमक वसे तिस नाले। हो किठ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक।

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही मैला पंजवा, जा कह दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम सितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची दे मान अभिमानी स्वाद बाद ईर्ष मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कार्य जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे

जाने कट कट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किस करे सोई पल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कह हृदय वसै मुरारी सुई महला पंजवा गुर परमेश्वर करने हार सगल सिस पौधे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द स्तन ते जाए रहाओ पल जल डूबत सतगुर काढे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे सांत सतगुर की रेण वड पागी पावे नानक गुर को सद बल जावे सुही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहाओ चरण कमल सो लागी प्रीत साची पूरन निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला तू ही महला पंजवा दर्शन देख जीवा।

पहर सनाहा कोट आवज किस बेदत नाहे। हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा। चल सकिए प्रभ।

मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सुही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महा निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो, रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने।

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा दीर छदाए, दुनी जो लाए। दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच सा।

सब अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर चर

दया न पाई, अनेक जन्म बीतने परमाई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दी जाए किर्त पवाई, सुन साजन संत।

कामना तौल हरे जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रवचित आए जल जाओ इह बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुखमन संतोखाए ऐसो राज न कितै कार जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दिस्या जे

जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया, रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया तिन तिन तिन तिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया, नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहुविध क्रिया पर को हिरिया, दिखना क्रिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

सतगुरु पास बेनती आ मिले नाम आधारा। सुखा सच्चा पातशाह पाप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओर तू सच्चा सिरजन।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुख दाते।

नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुखे पावा तुही मैला पंजवा विसरे नाही जित तू कभू सो थान तेरा केहा आठ पैर जित तुद तिराई निर्मल होवे देहा मेरे राम हौं सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साथ संग तिन शरणाई पाया रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बिल लाते ते भी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन भी अंक न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन के

निमुख सिमरत जी छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रसादी करिए रहाओ। को तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई, भगता बन आई प्रभ अपने स्यों, जल थल में यल सोई रहाओ, कोट अपराधी संग संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्ष्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पे निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई, तेरा मान तान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे, रहाओ अंधकूप से काढ़ लिए तुम आप पे कृपा।

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम दया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा। तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या।

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू साची देह ध्यानी कृपा करो प्रभु करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याये तेरी गत में तू है जाने कुदरत की न पाये निर्गुण मुग्ध अजान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख।

शाही सच्चे से पीरा पे सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीस।

कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सूही मैला पंजवा तुद चित आए मां आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास।

अमृत बचन हृदय और धारी तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारी तुझेवड़ अवर न कोई। जिसनो लाए लहे सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पोक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ

गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्यारो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करे प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राजसूही अस्पदिया महला पहला कर तहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंस मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सह सिगार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ पाई।

सच्चे से तीरतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित्त

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया, चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सत

जो आरन लोहा पाए पन कड़ाई है, क्यों साकत जोनी पाए पवे पवाई है। दिन बूझे सब दुख दुख कमावना, होमे आवे जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरुमुख रखन हार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है। तू देखे थाप उथाप दर दीनाई है। देही होग खाक पवन उड़ाई है। इहो किथे कर औकात महल न पाई है। देहो दीवी अंध कोर कब मुहाई है। गर्भ मुसे कर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दीपाई है। लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाई है। सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है। रात दे है हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है। सुही महला पहला मनो ना नाम विसार ऐ निस्त्याई है। जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की टेक नाम हो है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवें रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कह, जन्म मर

बिन सदगुरु नाम ना जाते हैं। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते हैं। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने, हों में दुख ना संताप है। बलिहारी गुर अपने विटों, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई रहाओ। गुरमुख गावे गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कार्य सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे, दिखते संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे, होमे विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत्सर नान, गुरमुख आप बुझाए। अक्सर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिर्फ सच्ची सलाह, पूरे गुर से पाए। तन मन सब किछ हर किस केरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सतगुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सवालियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का सबद समाले हर की भगत सदा रंग राता हो।

काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ परत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखन पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निद पाई है, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, यह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, नाही नाम पाई है गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्ण महेशा, सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही, कहां जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमकुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया।

सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना भुख ना उतरे अंधन जल फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप दुबे

किछु ना जाए। महापुरखा का बोलना होवे किते परखाए, ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवट पागी जे

मनमुख मन न पिजई अपने ले चित कठोर सपे दुध पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिय आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पया किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

है एक सों लिव लाए हों मैं मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है चले ना चल दिया नाल विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो संभाल एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुरु सेवन अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन नान खुटे। हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख

गुर राखे से उबरे हरसो केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अंजन मिले रहन। इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है। कित बिद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है। अचिंत वसे मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन। हों तिनके बलिहारणे मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान। गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय। गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए। मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला चिचर आखदा जिचर है दो माहे। गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए खाए। जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा। हम किसके आप विचाई दर्शन हर देखन कहताई। कृपा करें तो सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहा। जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे से आई। जे भुख देहे ताइत ही राजा दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया दुआर है हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अरादी जे मार कढे बीत्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ न जाई। जे तुद वल रह ता कोई क्यों आखों तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना हर तो दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसे पी गुर देखन जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोब करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होय सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए होर नेफल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई। इक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वड्याई। गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कक्कर बर्फ वरसे
गुर सिख गुर देखन जाए, सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराए। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सोही महला चौथा, अष्टपदियां।

बिख्या कै संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कप पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अप तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाइये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याज कै वस्तर दीना फिरत प्यास ज्यो जल बिन मीना कछु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिये जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक त्याए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां करनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन लिखिया मन रहसिए, क्यों पाइए तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कबहु न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित्र।

नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सुई महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां।

काडिया जिनाने हो तू जाने लगा शूर मरों से वाडिया हों ना छोड़ो कंठ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा हिरो महिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर तासु से तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मुदातड़ी नित हृदय रखा समाल पाव जुलाई पंद पाओ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां।

हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हब बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्स रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किलविक वंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार भगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दाता।

पहला कुचजी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हौ कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हो सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हो इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो तें सहनालो मुतियस दुखा कु तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सोह पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निव लागो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो। हों आया दूरों चल के मैं तकी तौ शरणाए जियो, मैं आस

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा ने लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल न जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुर ना तृष्णा पुखड़ी हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निवला।

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज न पाया। सतगुर पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलानी।

पूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण राण न मैले वैसे नानक में वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बन जा सोहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया नेक न सके कोई जान जी ना रहने केवल रव रहा त्यो लोई माया निराशी रोए विचुनी बाली बाले ते

बाबुल जितनी दूर ना आवे कर पैये बलराम जियो। रहती देख दूर फिर रावी कर सोइए बलराम जियो। साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने। संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए। नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंख समाए। राग सुही मेला पहला संत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए। सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया। हम दिन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए। पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे। सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे। ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मंथन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना। अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो। जंत ते तू सकलो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने के

विदाते तस्तर मार वसी पंचायण अदर करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

राम प्रभु दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसदी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपूरे सताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना वे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुई छंत मेला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जग तंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिनकी आतिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिनसों गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिनसों से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी से ती गहर है सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा कहो वे वासला कडवास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कदवास लई जय आप करे किस आखिए होर करे न कोई आखणता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान हम मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई आप करे किस आखी है होर करे न कोई सूरी महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सालाही है जिन कारण किया मैं लागी मन मैले है किने अमृत पिया मत अमृत पिया ए मन दिया गुर पे मोल कराया आप नड़ा प्रभ सहज पछाता जामन सा फैलाया इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो सालाही है जिन जगतो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर से तीराता साहिब रंग राता सच की

बाता जिन बिंब का कोट उसारया पंच पू नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारया। हम अवगण्यारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आवन जाना नाची है साची मत होई। अंजन कैसा अंजी है जैसा फिर पावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे। आप जनावे मार्ग पावे आपे मनुआ ले वे कर्म सुकर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे। तंत मंत पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे सूझे गुर सबदी सच जानिया। साजन होवन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करे रलिया कर्म कर्म सब आया अठहठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया। आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन राग रंगीलड़े रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने आप मुसे मत होछिए।

हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई, कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल न पुले, जय जयकार करे तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य, हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई, नानक जिन कर देखिया देवे मत साई, राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो, गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी दुर अपने बिटो जिन कारे सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो, नानक कह सुनो जन।

तिन जन्म मरण को पागा। अंदरों दुर्मत्तु जी खोई सोजन हर लिव लागा। जिनको कृपा पीनी मेरे स्वामी तिन अंदिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा।

करुणा का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे करमाही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए सदा तृप्त पासी, फिर भूख न लागे आए, जय जिस पूज हो वे हर जन की, जो हर हर नाम से आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे करमाही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राखे, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हो मैं सबद जलाया राम, हो मैं सबद जलाया, मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख वखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा मन भाया, नानक भगत सोए दर साचे, जिनी सच्चो सच कमाया, हर भगता की जात सत है, भगत हर कै नाम समाने राम, हर भगत करे विच्चों आप गवावे, जिन गुण अवगुण पछाने राम, गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने, पै भगत मीठी लागी, अमजिन भगत करे दिन राती, कर ही मैं बैरागी, पगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखे सदा नाले, नानक से भगत हर कह दर साचे, अमजन नाम संभाले।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सत सोई, नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई।

काल संकट मार समाने हर मन पाने नाम निधान सच पाया सदा फुट कदे नाम खुटे हर दिया सह सुहाया हर जन ऊंचे सभी ऊंचे गुर के सबद सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग सोगा पाया सुही महला तीजा सबद सच्चे सच सोहेला जिथे सच्चे का होए विचारो राम हों मैं सब किलब काटे साथ रखिया उधारे राम सत रखिया उधारे दुत्तर तारे फिर फल जल करण न होई सच्चा सतगुर सच्ची बाणी जिन सच बिठा लिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखे सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सतगुर साथ बुझाया पत राखे सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाये सच नाय प्रगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए हम दिन सच आयन नानक सच नाम जिन हृदय वस्या ना बिछड़ दुख पायन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे।

सच्चा सबत सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

सुख होई। सतगुर सेव तन बालड़िए, हर वर पावे सोई राम, सदा होवे सुहागनी, फिर मैला वेश ना होई राम, फिर मैला वेश ना होई, गुरमुख बूझे कोई, होमे मार पछाणिया, करणी कार समावे, सबद समावे, अंतर एक हो जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती, अपना साची शोभा होई, नानक कामन फिर रावे अपना, रब रहा प्रभ सोई। गुर की कार करे तन बालड़िए, हर वर दे मिलाए राम, हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए, सत समाए, सत वर कै सब थाई, सच्चा शिगार करे दिन राती, कामन सत समाए। हर सुखदाता सब पछाता, कामन लया कंठ लाए, नानक महली महल पछाणे, गुरमती हर पाए। सातन बाली तुर मेली, मेरे प्रभ आप मिलाए राम, गुरमति कर चानन हुआ, प्रभ रव रहा सब थाई राम, प्रभ रव रहा सब थाई, मन वसाई पूरब लिखिया पाया, से सुखाली मेरे प्रभ पानी, सत सिगार बनाया। कामन निर्मल हो मैं मल खोई, गुरमत सच समाई, नानक आप मिलाई, करते हैं नाम नवै निध पाई। सूही महला तीजा, हर हरे हर गुण गावो, हर गुरमुखे पाए राम, अंजिनो शब्द रवो, अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए, हर जियो कर आए, हर गुण गावो नारी, अंजिन पगत करे गुर आगे, साखन कंत प्यारी। गुर का शब्द वस्या कट अंतर, सेजन शब्द सुहाए, नाम तिन कर सभी सोहिला, हर कर कृपा कर आए। पगता मन आनंद पाया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए, नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया सही जन निस्तरे, कट कट सबद समाणी।

बहु कृपा तारी हर कै सबत सुहाए राम मिल सबत सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसे इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड पागी गुर पाया कट कट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे अनद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो

पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी गुरमत नाम प्रगासा।

बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूर कपट कमावे मां दुख पावे बिन सतगुरु मग न पाया उज्जर पंथ प्रमेय गवारी खिन खिन तके खाया आपे दया करे प्रभु दाता सतगुरु पुरख मिलाए जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले नाम सह सुभाए आया लगन गणाए हृदय तन उमाया।

राम जीओ पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाई बल राम जीओ पत्ती बचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कार्य आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरुष अगम अगोचर सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मेले विछड़ कदी न जाए। सुही महला चौथा हर कैलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो पाप सजाया बलराम जियो कर्म दृढ़ो हर नाम के आवो सिमरत नाम दृढ़ाया।

हर कीजड़ी ला मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकप कहानी हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो जन नाम बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी ला मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंदिन हर लिवलाई मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम

खास शब्द लिवलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा, सब में रब रहे।

बात न जाए। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद दुत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए, गुरुमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया वडपागी, सच नाम लिवलावे मत प्रगास पई मन मानिया, राम नाम वडिआई नानक प्रभ पाया, शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, हौं मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभु गुण तासे, तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सब आसे, वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा, कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा, हौं तुझ बाजू।

मन दैद से चल चल परमिया, मन मुख परम को लाया, नित आशा मन चितवे, मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक।

अदलह नाम लो गोविंद नाम मजीठा, थी रहे लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा, मिथ्या मोह मगन थी रहे।

देव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाई है पागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जाए संत ना की जाए गुरमुख तज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमा।

ते पाई साचे सृजनहारा, जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दस के त्या गुरपुरा, नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान, महत सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी, गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ, नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे, सुन पै विनाशे सगल नानक, प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है, इक हर बलराम जियो।

आवन लागे, हर रंग अंगन जागे, हर रंग जागे, पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे, परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी, सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबत सुहावा, सच मंगल

बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर करया हर चरण जपत मुस्तरया, हर चरण के आए सब फल पाए मिटे पावन जाना। पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जप देखा तत सोई।

गड़दाना कर मेरा मत सोई कृपा की जैसा मत दीजे हाथ पैर तू त्याई गर्भ ना की जय रेण होवी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कणचेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम फिर हम दोरिया राम तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनीक लोरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन

बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम। गुर सबदी करिए बहुत न मरिए चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई फल मानो तामन सहज समान। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई, अनग दिनो सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाय। सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुर चीने, कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने। अनग दिनोद कहे मित सखिए मंगल सदा हमारे राम, आप नरे प्रभ आप सिगारी सो बावंती नारे राम। सह सुभाए पे कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया, ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन किस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा अंचल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम, करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे। गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुर पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सुहाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ पया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर कृपाला। जय दिस पूर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान त्याम पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर पंजन अनहद वाजे तुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे किलविक सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बोर न पाइए जोनिए, नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साध छुनिए। सुही महला पंजवा संता के कारज आग खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगर विसूरे, पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध रिद दीने करते तोट ना आवे काई राम, खास खर्चक बिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम। दात सवाई निखुट ना जाई अंतर जामी पाया, कोट बिगन सगले उठ नाथे।

ये दुख ना नेड़े आया। सांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सदाई, नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार इतनी ही किया मानस क्या बेचारा राम, भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी, जिन उद्यम किया काल के रात इसकी उपमा क्या गनी। अखट तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा, पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम, संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो, गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तने अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना सितारे। पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले, खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा, नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई, आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हर निमक ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कहया जी।

कारण अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोकां नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आपने ली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समार नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल कौड़ी। आपे तक प्रचायन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा।

सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सोई सत्यारा। श्लोक महला तीजा। सुहुविये सुहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ, खिन में टूट सब विनस जाए, जो टिके ना बिरक की चाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीद सचड़ाओ, उल्टी सकत स्वे कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर आपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा। सुहा रंग विकार है, कंत ना पाया जाए, इस लहदे बिलम ना हो गई, रंग बैठी दूजे भाए। मुंड एआणी दुमणी सूहे वेश लुभाए, सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए। नानक सदा सुहागणी, जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी। आपे आप उपायन आप कीमत पाई, तिसदा अंत ना जापई, गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई, मन मुख ठौर न पाएनी, फिर आवे जाए, जो तिस पावे सो थिए, सब चले र जाए। श्लोक महला तीजा। सूहे वेश पावन कुलखणी, जो प्रभु छोड़ पर पुरख करे प्यार, उस सील न संजम सदा झूठ बोले, मन मुख कर्म खुआर। जिस पूरब होवे लिखिया, तिस सतगुरु मिले पतार, सूहा वेश सब उतार तरे, गल पहरे खिमे सिगार। पेय सहरे बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार, ओह रलाई किसे दी ना रले, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला। सूहा रंग सुपने निसी, दिन तागे गलहार, सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी, सब बुरे आया चार। पौड़ी। इहु जग आप उपायन, कर चोज विधान, पंच तात विच पायन, मोह झूठ गुमान। आवे जाए को आये, मन मुख अज्ञान, इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजाना बख्शियोन, हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा। सुहुविये सुहा वेश छड़ तू, ता तिर लगी प्यार, सूहे वेश तिर किने न पायो, मन मुख दज मोई गवार। सतगुरु मिले सूहा वेश दया, हो मैं विचो मार, मन तन रता लाल हुआ, रसना रती गुणसार। सदा सुहागन सबद मन, पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया, फिर राखिया उधार। महला तीजा। मुंडे सूहा परहरो, लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार। मुंड सुहावी सोहनी, जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है, रावे रावण हार। पौड़ी। मोह कूर कुटंब है, मन मुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता। सिर उपर जम काल न सुजई, दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई, जम काल वस किता, जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा। सतिया ए ना आखियन, जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जानियन, जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा। पी सो सतिया जानियन, सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा। कंता नाल महेलिया, सेती अग जलाए, जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक कंत न जाननी, से क्यों अग जलाए, पावे जीवो कै मरो, दूरो ही पज जाए। पौड़ी। तुद दुख सुख नाल उपाया, लेख करते लिखिया, नामे जेवड होर दात नाही, तिस रूप ना रिखिया। नाम अकुट निधान है, गुरमुख मन वस्या, कर कृपा नाम देवसी, फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले, जिन हर जपिया।

हार चलन सार न जानी का सवारण हार महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए महला दूजा बब्बा चक्की जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे शिष्ट उपायन आपे फुनगोई जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाये करता करे सोई श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या नानक एहो पटंतरा तित दीदान गया महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तो नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजे तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखता रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ोवे आप कर आप पीने आता हो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म

रंग गुरमतमान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे तन चोर इक पौ लखी नात्या देखा चढ़िए सहोर। बहर धोती तूमड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर। पौड़ी आपे हुक्म चलायदा जगत अंदर लाया इक आपे ही आप लायन गुर ते सुख पाया। दै जिस ए मन पाऊंदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमती पाया। तुर लिखिया मेट न सकी जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जारे खुले हट हुआ पार जो पहुंचे सो चलन हार। परम दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला राती होवन कालिया सुपेदा सेवन देव बग्गा तपै कना कालिया काले वन। अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान। पौड़ी काया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन हों में विच व्यापे। इह मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संकापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर खापे। सब जग खेल रचायन सब वरते आपे। श्लोक महला पहला चोरा जाड़ा रंडिया कुटनिया दीवान वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान। सिफ्ती सार ना जाननी सदा बसे शैतान गधो चंदन खौलिए पीसाहू स्यों पान। नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान कूड़ा कट्टर कछिए कूड़ा पैनन मान। महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान इक दाते इक मंगते नाम तेरा प्रवान। नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया हों मैं झगड़ा पायोन झगड़े जग मोया। गुरमुख झगड़ चुकायोन इको रब रहा सब आत्म राम पछाणिया पौ जल तर गया जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया। श्लोक महला पहला सतगुर पीछिया देह में तू समरस दार हों में गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार। लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार एनस नव तन निर्मला मैला कबू न होए। नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए। मैला पहला इको कंत सवाईया जिती दर खड़िया नानक कंत रतिया पुछे बातड़िया। मैला पहला सबे कंत रतिया मैं दुहागन कित मैं तन अवगुण एतड़े खसम न फेरे चित। मैला पहला हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात सब राती सुहागनी इक मैं दुहागन रात। तौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर। अनहद शब्द बजाए ज्योति जोत पर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर। जग में वरते आप हर सेती प्रीत कर।

हंस सिफत सलाहन छड़ के तरंगी लगा हंस फिट इवे आजीविया जित खाए वधाया पेट नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत पौड़ी ताड़ी गुण गावे नित जन्म सवारिया।

दिलमुख शेर सला है चाव मारिया कर दर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम है गुरु को वारिया तू आप सवार आप सृजन हारिया। श्लोक महला पहला दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मक्का पा खाए उगवे सूर ना जापे चंद जह ज्ञान प्रगाश अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की कार हर पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर सुपार। महला पहला शब्द साड़ ना आयो नाम ना लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर नानक पया किरत कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी जे प्रभशाला है अपना सो सोभा पाए सोमै विचों दूर कर सच मन वसाए सच बाणी गुण उचरे सच्चा सुख पाए मेल पया श्री विछुनिया गुर पुरख मिलाए मन मैला इव शुद्ध है हर नाम त्याए। श्लोक महला पहला काया कुमल फुल गुण नानक गुप्त समाल एनी फुली रो करे अवर के चुनिया डाल। महला दूजा नानक तिना बसंत है जिन कर वस्या कंत जिनके कंत दिशा पूरी से ऐन स्थिरे जलंत। पौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी अंदिन सेवी गुण रवा मन सच्चे रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने न लखनी सतगुर चरणी लगिया हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाए सी सब करे विच जचनी। श्लोक महला पहला पहल बसंत है आगमन पहला मौल्यो सोए जित मौल्य सब मौल्य तिसे न मौल्यो कोए। महला दूजा पहल बसंत है आगमन तिसका करो विचार।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कहने लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए हर नाम सुनावे सतगुर सेवा सतल है सेवे फल पावे श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई मंज निमाणी तू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालोए नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे परवाओ है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगता की।

राम को नाम न कभू लीना, राम न जपो कवन मत लागे, मर जैबे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटंब जीवाया, मरती बार इक्सर दुख पाया, कंठ गहन तब करण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रैन गई मत दिन भी जाए, पर गए बग बैठे आए। रहा काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगह का आया। रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया तया कराया, कहो कबीर तेरी नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित ठाके, नैन श्रवण सुन ठाके, ठाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत ठाकी, एक न खाक समाया, बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया। रहा तब लग प्राणी तिसे सरे हो, जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले, मन जिन ताले पासा, जो जन जान कजे अवगत को, तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर ते जन कबो न हारे, पाल जो जाने पासा। सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सवतावे, रैयत बचन ना देही, डोरी पूरी मा पैना ही, बोगस काला ले ही, बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सोदिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे, सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जिन नहा निरंतर भगत न कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रब तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गमन से ऊपर मरना।
जा तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

जो किछु होआ सब किछु तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चकराई। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हों बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन ना।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी,

तुम्हारी सर्व चिंतित तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे पान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलग अधेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार ऊंदी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप दिसे वे जात न होए एक एक को ना ही सौ कोए करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से मारया ठाक रहे मन साचे पारया अवर न सूजे गुर को वारया नानक नाम रते निस्तारया। बिलाव महला पहला। गुरु बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम फुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुरु शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जियोरा रह न सके खिन सतगुरु बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरह हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैराजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिया गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों में लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहित सों जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण सारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख वखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम कुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे नानक पाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा। अतुल क्यों तोले आ जाए दूजा होए कौन सो जी पाए किसते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवती लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा। साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए अंदिन लागे सहित्याना। रहाओ
क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना। जब अपनी जोत खींचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुरु चेला है आपे, आपे गुण निधाना। जो आप चलाए तिने कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा। इक ना कर मैं देवड़े आई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा खाद बनाया पूरे, वेखो एक समाना। इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चहु जुगा का हुन वेड़ा, नर मनुखानो एक निधाना। जत संजम तीरथ ओना, जुगा का कर्म है, कल में कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना कर्म है, सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी त्याया।

जब से पूरे परवाना कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हों में माया शब्द जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनध होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई जीवन मरण को संसर वेख है बहु न मरे न जम पेख है कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहस्यान अंजन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरु ते नाम से आई जह देखा तेरे समाए सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इक ओंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रभ अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रे करे ओ सरना प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राज कपना हर दासन दास दास हम करियो जनमानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा हम मूरख मुगध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जतिये वड्डे करम्मा नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सम्मा कोय फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर न सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुर पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी
हर देहो मति जस करा, तुमरे संग लगे से उदरे, जो संग पासत लोह तरा, साकत नर होची मत मद्दन, जिन हर हर सेव ना करा, ते नर पाधीन दोचारी, होई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोख गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया, जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहे थे कल जुग, खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिख लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाये उपदेश जन करो। सतगुरु सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरतो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापे, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार जम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नहीं। अपना पला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अन दिन अनद आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदक, विच माया फिरे फिरंदे। कृष्णा जलत किरत के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो, हर संत भगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिरस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नाम किस पगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर कहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे किस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ पवन चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्व पुयंगा, हम में पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहाँ होए कृपाल संग गुरु मिलावे। हम फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना पाया, हर का मंदिर किसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल। जिन चाखिया किस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्पा वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए। रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगा जाका वड़ पर पाप, गुर प्रसाद ना होए सिंपात, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने मूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगण से गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोए अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोए निर्गुण ली जय लड़ लाए। रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही ही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन सन अंतर हर हर मंत, नानक पगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा

मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक। अवर स्याण पा बिरसिया प्यारे, राखन को तुम एक रहाओ। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी, तेरे जन देखन पावा। वड पागी से पाड़िये प्यारे, संत संगत जिना वासो। अमृत नाम अराधिये निर्मल, मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिये प्यारे, चूके जम की काने। तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी शरण आई, सदा सदा बलिहारे। बिलावल मैला पंजवा, दिखे बन फीका त्याग रि सकिए। नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होत जियो, मान महक ना सकती पाई। सादा दासी कियो, नानक से दशोभा बनते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदोरी चित क्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस ओगण अतरूप रस माते, इन संग सूख न पाया। तन तन हर साधन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वड पागनी सखिए, संता संग समाइए। कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाइए। कहे जन्म ना मरण ना आन जाना, नेचल सरनी पाइए। प्रेम बिचो ना मोह व्यापे, नानक हर एक ते आइए। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतले सह सुहाए। से सुहावी संग मिल प्रीतम, अर्ग मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छु जाए। नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक रूप सगलो पासारा। आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए। जप जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा। आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा। आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सुधरना। आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना। आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल ना जाई चलना। आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना। आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुरु वड़ पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे।

बंधन काट मुकुट बुरकीना दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ चरण कमल गुर आत्म दिया अग्न सागर बूढ़ संसारा नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा बिलावल महला पंजवा तन मन तन अर्पो सब अपना कमन सुमत जित हर हर जतना कर आशा आयो प्रभ मांगन तुम पे खत शोभा मेरे आंगन रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो साथ संग इस मने उदार मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई ता मिलिए जान ले मिलाई नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ ना माया साथ संग सब दुख मिटाया रव रहा प्रभ सब में आपे हर जप रसना दुख ना व्यापे रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया शीतल पे हर हर जप जापया कोट जतन संतोख न पाया मन तृप्ता ना हर गुण गाया देहो पगत प्रबंध कर जामी नानक की बेनंती स्वामी बिलावल महला पंजवा गुर पूरा वड़ पागी पाई है मिल साधु हर नाम ते आई है पार ब्रह्म तप तेरी सरना किलबे काटे पज गुर के चरना रहाओ अवर करम सब लोकाचार मिल साधु संग होए उधार सिमरत शास्त्र वेद विचारे जपिए नाम जित पार उतारे जन नानक को प्रभ कृपा करिए साधु तूर मिले निस्तरिय बिलावल महला पंजवा गुर का शब्द।

अपना नाम दीना रहाओ, अंधकूप से पर गह लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल स्यों लाई है चीता, हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत, जल न बुझे हर हर गुण गावत रहाओ, सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमक न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर मैं आया रहाओ, भगत वचल पैका तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीर, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरम पर ठाकुर मेरे रहाओ, एक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई, कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर रस छोड़ बिखिया फल चाख्या, पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े, तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ, तन मन तन अपना कर था पिया, कर्म हार एक निमक न जापिया, महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया कटल बिसरिया, वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणी, अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ, सगल संजाम करे प्रभ आपे, ऐ मनोर सो प्रभ जापे, हर कर्म काम मोका दाता, पूरी तई सिमर सिमर विदाता, साध संग नाम करंग मान्या, कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ, हर हर नाम जपत नर जीवे, नर कुआर सात नर थीवे, राम नाम हुआ रखवारा, चक मारो सात बेचारा, निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपट फास गले सिर पैरे, कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा दो पदे।

रहाओ। ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना चाहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विस्फनासे। अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत औद।

सुख मंगल कल्याण विचारिया रहा वंत्रण त्रिभुवन हरिया होए सगले जी सधारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवा जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत का तैसो काल रहा सात संग पजिया गोपाल गुण गावत तू तै जंजाल आपे सतगुरु आपे प्रपाल नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा मन में संचो हर हर नाम हम दिन कीर्तन हर गुण गान ऐसी प्रीत करो मन मेरे आप पहर प्रभ जानो मेरे रहो कहो नानक जाके निर्मल काग हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहो राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माह त्याई नानक गुर पूरे सरनाई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहा जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार नानक दास का की सरनाई जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा ताप संताप सब ले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहा सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग आए बसो कर देश में ए तले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे लह गए बियोग। बिलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सिधारे छत्रपत संतन के ख्याल राव अहं बुद्ध को बिन समा ए कुर की टाल बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा सहज समाज अनंग सुख पूरे गुरदीन सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ जय जयकार जगत में लोचे सब जिया सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु कस बिघन न थिया जांका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाया नानक गुर पास। राग बिलावल महला पंजवा कर पंजवा चौक दे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार बिन सत बार ना ला गई ज्यो कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कर बार रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पक्ति लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा मैला कदे न हो गई नहला गै दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए
सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहो।

न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्द तेरा पार जम गुण लिख तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल मेला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे। सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे रहाओ। हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दाता रे। दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब कुछ दया तार हम अकीर्त कनारे। लाज परे तेरे दांस्यो नै चित पस मारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे। कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये। जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाये। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमारा रहाओ। जो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा। नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता। सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, निर्प हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे। बाद साद अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अकागे। देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे रहाओ। कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई। माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी। अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता।

गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया सात संग हर हर अमृत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवन आते तो बिरथारी, मिलत संग सब कम मिटे गत कई हमारी। जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी। रहाओ एक छदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन ए मन पया बिनसी अकदारी। निंद चिंद पर दुखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी। तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन आनंद होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उकत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल, तम पैरा को मोहते काटो जमजाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छर जाए, तुमरी कृपा से छूटी है बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। राव खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर, जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली, सब किछ तुम ते मांगना वड़।

राज मिलक सुखदारियां अग्नि महजाल संत जना का छोरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान गृह साकत छत्ती प्रकार ते बिकु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई साकत सिर पाओ रेशमी तहरते पट खोई साकत स्यो मुख जोरे है अदवी चो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत ऊते छूटे सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई दर्शन पेट साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रवनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर हर नाम ते आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो संत जना की रेणका ले माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो

न विसरे अनकते न पावो सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो सत संतोष दया कर्म सिगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब में प्रगताया जिस जन हुआ साध संग तिस पेटे हर राया ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया अनक बाता सबका।

मत फूलो मानस जन्माया परमाया नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया बिलावल मेला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे क्यों बिसरे प्रभ मने ते।

छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े नहीं। जिन अनक एक बहु रंग किए है होशी एह कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले है। ऊंचे ते ऊंचा वड़ा सब संग बरने है। दास दासन को दासरा नानक कर ले है। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है दीन दयाल कृपा निजे सास सास समार है। करन हार जो कर रहा साई वडे आई गुरपुर उपदेशिया सुख खसम रजाई। चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता नह बिन सह में छोड़ जाए।

हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी देन जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए वस्त संग हर साध के पूरन आसाए पदन से कुल लोक के पाए सुख थान दया

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल पोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध के बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर के काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिक उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे सुर पुरख अपार, चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया समाद की अमृत तृप्तास्या ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे, सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन, नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का आ

पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभु के सेवक शरण प्रभु तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पत्रिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहा। जी जंत सब सुख बचे सब के मन लोच, पर उपकार निश्चित बचे नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अतकना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीव किया अथवा मोया।

की कर्ता करे काम को काटे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल में अला पंजवा, खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना पला बसिया प्रभ संग रहाओ, बरन आश्रम साफ कर सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर, सो अंतर सो बाहर।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याग है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समाग है, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भाग है, राम नाम जो जम जपे अंगन सब जागे, पंख मंत्र नह जोई तित चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन

तो कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है किस दिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग, ताते बहुड़ ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभु प्रगुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लख सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब कला।

चीन जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुण दहीर नानक भगत आनंद में पेट प्रभ की तीर बिलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल राख लिया अपना सेवक को मुख निंदक छारे तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव जय जय पार जगत में सफल जाकी सेव पूछ अपार अगणक हर सब जी जिस हाथ नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा राजया होए कृपाल मार्ग संत बताया।

शीतल भय राखे प्रभु आप, नाम सब शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभु नित गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

नानक जोर गोविंद का पूरन गुण पात। बिलावल महला पंजवा। मर मर जन्मे जिन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया, अंदन रंग

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताती भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम और सब दिया एक काली।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहा उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितार है। सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करो

नानक की बेनंती प्रत है साथ संग रंग पार बिलावल महला पंजवा। संतन के सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुम पूर रही दिन और रात रहा कर कृपा अपने प्रभ की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तंभ के जात। त्रिपत अधाये तेज प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत।

गुण गोविंद गावो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप, चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तै बिन से, कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। पाप लाया गुर सृजनहार, सब गुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार, रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार तिहि मंदर, रतन कोठली खुली अनुपा, रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो, कह न जाए वढाई, मगन पे उहां संग माचे, ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा, अहं बुद्ध नहीं पोरा।

निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बिरंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जासु राच माच तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ छिने में जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज संवारो पावक तने जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर खाडे केस गहे से रावत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी ज्यो पहावत है कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान कंबोली रहाओ। सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली त्रै मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंदमई जब ते पेटू साध दया रहा तब ते दुर्मत दूर पही रहा पूरन पूर रहो संपूरन शीतल सांप दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अंकारा तंते हुए सगल खई सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिनको सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वरन ना साके एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई क्या कथी है किस कथन न जाई जह जह देखा तहरिया समाई रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभु तू है सहाई शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवा अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र एक निमक जताई है अचरज सुनियो प्रापक केतले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा को किसकी लई लई सुन जाई है नानक शरण शरण सुख सागर मुहे टेक तेरो इकनाई है बिलावल महला पंजवा संत शरण संत टहल करी तंग बंद हर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहा सुख सहज हर कनो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बरन ना सातू गुर पूरे मेरी उल्ट तरी तेखियो मोहन सब कह संगे पूर्ण न काहू सगल परी पूरन पूर रहो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हूँ क्या कहता जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

ज्यों कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितव नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन सो बाद उठरी है। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काटे बहां फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब पै स्यानप, प्रभ मेरा दाना बीना। हाप दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहा, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख।

पंजवा सदा सदा जपिए प्रभु नाम, जरा मरा कछ दुख न व्यापे, आके दर्द है पूरन काम रहा, आपके आग परिय हित करनी, गुरते पालिये हो निधान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दर्गे का निशान, जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोड़ किस नाही रहाओ, कुल समूह उदरे छिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पर आही, संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही, बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कैसंगा रहाओ, छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच ते तहरा जंगा, कभू न बिसरे हिए मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा, बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अप रखो हर आगे, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ, शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताची बाल, दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिलेरवाल, बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ, जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ काज लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे, बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहाओ, काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में हो गया है खाक, मंदा चितवत पचया, जिन रचया तिन दीना साक, पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सम पाई साक, कहो नानक।

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

पाप पाप से राखे आप, शीतल पर गुर चरनी लागे, राम नाम हृदय में जात रहो, कर कृपा हस्त प्रभु जी ने, जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख।